सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के

श्रावण मास की नौवीं तिथि तदनुसार 31 जुलाई 2026 इस समय प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी की आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में

0: नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की तरफ से प्राणी को अनमोल भेंट मिली है, वो है हमारी सांसें। अगर हमारी श्रद्धा उस ईश्वर के प्रति है तो हर सांस में उसी का सुमिरन करना है।

यह जीवन एक खेती की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। यदि जीवन में उत्तम फल की अभिलाषा है तो उत्तम कर्म रूपी बीज ही बोएं।

वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना हेमंती शुक्ला, हरिहरन, हरिओम शरण और कुमार गंधर्व की गाई भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देश गान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है ध्यान और परमात्मा। आलेख है श्री के जी महेश्वरी का। वाचन है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मन बहुत ही चंचल है, इसका स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। इसलिए जितने भी शास्त्र जो कि मन पर आधारित हैं, निश्चित नियम नहीं दे सके हैं। मन की एक विशेषता ये भी है कि जो पास होता है उसे वो भूलना शुरू कर देता है, और जो दूर हो उसे प्राप्त करने के लिए वो परेशान सा रहता है। जो दूर है उसकी याद में दिन रात बेचैन रहता है, और जब वो मिल जाए तो फिर उसकी विस्मृति शुरू कर देता है। उसकी ये आदत उसे कभी कभी तो बर्बाद तक कर देती है। इसलिए इस आदत से हमें छुटकारा पाना ही चाहिए। मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, और वो है ध्यान। ध्यान ही मनुष्य के अभाव के साथ संबंध को तोड़ता है। कैसी विचित्र बात है, यदि हमारे पास आज 1,00,000 रुपए हैं तो उसकी तो हम कम सोचेंगे। हमारी सोच ये होगी कि और रुपए कैसे आए ताकि 1,00,000 में कुछ बढ़ोतरी हो सके। जब तक हमारे पास 1,00,000 नहीं थे, हम सोचते थे कि ये कैसे आए, ये 1,00,000 रुपए कैसे हासिल हों। पर जब ये आ गए तो फिर हम ये सोचते हैं, हम इस बात की फिक्र करते हैं कि और रुपए कैसे आए। ये सीमा सुरसा के बदन की भांति बढ़ती जाती है। मन आपसे कोसों दूर आगे बढ़ता चलता है, पर उसकी चाल सदैव उल्टी ही है। जो मिल जाता है उसे भूलना, और जो है नहीं उसे याद करना, यही इसकी क्रिया है। कितने ही प्रसंग ऐसे होंगे जबकि बहुत से महापुरुषों को उनके जीवन काल में पहचानने का प्रयास ही नहीं किया गया, और जब वे रहे नहीं तब लोगों ने उनके महत्व को पहचाना। पर उस समय सिवाय पछतावे के फिर क्या हाथ लग पाता है। इसी तरह भगवान बुद्ध का अंतिम समय था। एक व्यक्ति भागा भागा आया और कहने लगा कि भगवान, मैंने कई बार आने का प्रयास किया पर कभी कुछ लगा ही रहा और मैं आ ना सका। पर अब जब पता लगा कि आप संसार ही छोड़ने जा रहे हैं तो मैं भागा भागा आया हूँ। भगवान ने कहा कि तुम आ तो गए, भले ही बहुत देर से आए, पर बहुत से तो मेरे जाने के बाद आएंगे, अतः मन की इस प्रवृत्ति को त्यागना ही होगा। हमें मन पर संयम करना सीखना चाहिए। दैनिक रूप से एक निश्चित समय तक ध्यानस्थ रहने से ही यह संयम आ सकता है। एक समय एक ही काम में रम जाने से मन नियंत्रित होगा। यदि भोजन करना है तो भोजन में ही ध्यान रखने से इसका सही स्वाद और आनंद प्राप्त हो सकेगा और शरीर स्वस्थ रह सकेगा।

0: ऐसा न करने से भोजन निस्वाद तो लगेगा ही, वो शरीर को भी नहीं लगेगा। स्नान करो तो ध्यान स्नान में ही रहना चाहिए, मन प्रफुल्लित हो उठेगा, अन्यथा कहीं साबुन लगा रह जाएगा और कहीं शरीर सूखा ही रह जाएगा। ध्यान केंद्रित करने से भोजन करना व स्नान करना भी एक प्रार्थना बन जाएगी। अगर हम वर्तमान में जीने लगे तो चीजें बड़ी सरल हो जाती हैं। ऐसा न करने से सरलतम बातें भी कठिन हो जाती हैं। परमात्मा वर्तमान है, पर मन तो भविष्य की ओर दौड़ता है। दोनों समानांतर हैं, रेल की पटरी की तरह, इसीलिए कभी मिल नहीं पाते। अगर मिलना है तो ईश्वर से वर्तमान में ही आत्मसात करना होगा, तभी जीने का सच्चा आनंद है और यही परमात्मा तक पहुंचने का सरलतम उपाय भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था ध्यान और परमात्मा। आलेख था श्री के जी महेश्वरी का और वाचन था यतीन्द्र चतुर्वेदी का।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्रीराम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग और उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे नौटंकी, यही ब्रज धाम है। आलेख है रमेश चंद्र गौतम का, प्रस्तुति है हरिबाबू कौशिक की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप तक पहुंचेगा सुबह 8:30 पर। 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है बरसात के मौसम में आंखों की सामान्य देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर सूफियान दानिश और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर, जिसमें आज का विषय बढ़ता तापमान और पिघलते ग्लेशियर। आलेख और वाचन श्री हरिनारायण कोहली का।

सुबह 9:30 पर गांधी चर्चा, 9:45 पर सुगम संगीत, 10 बजे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर, प्रस्तुति होगी देवराज कृष्ण दीक्षित की। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11 बजे, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण आप सुन पाएंगे पूर्वाह्न 11:30 पर, मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS ये कार्यक्रम आप सुनेंगे।

बातें फिल्मों की प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा होगी मुंशी प्रेमचंद जयंती पर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। साथ ही सुनिएगा युवा काव्य गोष्ठी जिसमें प्रतिभागी होंगे दिनेश सिंह ब्रजवासी, नीरज चतुर्वेदी और संचालन करेंगे भावना शर्मा। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:15 पर। चर्चा होगी धान की फसल में सामयिक कार्य इस विषय पर और बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा इस विषय पर। साथ ही वार्ता सुनिएगा मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा।

दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में चर्चा होगी ऊर्जा की बचत छोटी आदत बड़ा योगदान इस विषय पर। दूसरा विषय होगा परिवार पर नशे का प्रभाव। साथ ही सुनिए

संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर, शाम 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज नव कथा नयो जमानो। कथाकार होंगे कमल भार्गव। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। संसद समीक्षा रात 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर।

रात 9:15 पर नवरंग और रात 10 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण किया जाएगा। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी विदुषी गंगूबाई हंगल और आप सुनेंगे इनका ख्याल गायन।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग और उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, गाय भैंस दोनों में संक्रमण से फैलने वाला खुरपका मुंहपका एक विषाणु जनित रोग है, जो कि गर्मी और बरसात में इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है। रोगी पशुओं की मृत्यु दर तो मात्र 2-3% है, परंतु इससे प्रभावित पशु पशुपालक के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाते हैं। इस रोग में पशु को जाड़ा देकर के बुखार आता है और टेम्परेचर पशु का लगभग 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। पशु सुस्त होकर के चारा दाना खाना और पीना तक कम कर देता है, मुंह से लार आने लगती है, मुंह और खुर में छाले यानी के जख्म बन जाते हैं और ये छाले गहरे होने पर पशु मुंह खोल करके सांस लेने लगता है। इलाज में लापरवाही होने पर घाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। रोगी पशु के पैरों के घावों को 1% तूतिया यानी कि नीला थोता के घोल से धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक दवा उस पर लगानी चाहिए तथा पशु का इलाज किसी नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिलकर के करना चाहिए। पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका मुंहपका यानी के FMD वैक्सीन का टीका हर 4 माह के अंतराल पर पशुओं को लगवाए जाते हैं और इसको भी पशुपालक किसान भाइयों को विशेष रूप से अपने पशुओं में लगवाते रहना चाहिए। इन दिनों में खास करके बरसात के समय में या बरसात के उपरांत परजीवी रोग भी अक्सर देखने को मिलते हैं पशुओं में। इसमें होता क्या है कि बरसात के मौसम में अनुकूल वातावरण मिलते ही अंडों से भारी संख्या में लार्वा पैदा हो जाते हैं, जो आसपास की घास

0: घासों पर चिपक जाते हैं। बाद में पशु द्वारा चारे के रूप में घासों के खा लेने अथवा संपर्क में आने पर ये लार्वा पशु में आंत परजीवी यानी कि राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, टैप वर्म के रूप में पशु के शरीर में पहुंचते हैं। बाह्य परजीवियों में विशेष रूप से पशुओं में इस मौसम में किलनी, जू, चिचड़ी के रूप में देखने को मिलते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां पैदा करते हैं। अगर इस तरह के बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी के रोग आपके पशुओं में पैदा हो रहे हैं तो पशु चिकित्सक से मिलकर के इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। वैसे ब्यूटॉक्स या क्यूटॉक्स नामक दवाएं बाह्य परजीवियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किलनी, जू और चिचड़ी आदि के लिए। एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल या नील वर्म का प्रयोग विशेष रूप से अंतः परजीवियों जो पेट की कृमियां हैं जैसे कि राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

और आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज है महान गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि, तो ये कार्यक्रम का पहला गीत हम समर्पित करते हैं उनको।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आपने सुना गंगा जमुना फिल्म में। गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं भाई भाई फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

बड़ी बहन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और प्रेम लता के स्वरों में। बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी हुस्न लाल भगत ने। अगला गीत आपको सुना रहे हैं बैजू बावरा फिल्म से, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज

0: इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को ही पारित कर दिया था। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
2: विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने कल ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने 29 जुलाई को ही इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: राष्ट्र

0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये युवा देश के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के जनभवन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और अन्य तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर जिले में 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की।
2: मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
0: श्रावण मास कल से शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कल समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत की।
3: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो व्यवस्थापना के बिंदु है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु है, डिप्लॉयमेंट के बिंदु है, उन विषयों पर चर्चा हुई।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण UP रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही यूपी रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
4: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए

0: 5,000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान हुआ है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: बागपत जिले के छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में कल शाम एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे के शासन की मदद से मलबे को हटाकर दो शवों को बाहर निकाला गया, जबकि गंभीर तौर पर घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेफर होने के बाद इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: भैया आज के ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नौटंकी, यही ब्रज धाम है।
1: यही ब्रज धाम है, आइए सुनते हैं रमेश चंद गौतम की लिखी ये नौटंकी। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं नरेश मल्होत्रा, प्रस्तुति सहयोग हरिबाबू कौशिक का है।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में अभी आपने सुनी नौटंकी, यही ब्रजधाम है। आलेख रमेश चंद्र गौतम को, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की। यह कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: वहीं जनता

0: यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा

0: है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण

0: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक

0: countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovepreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। हमारा अगला कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
3: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
2: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

केसरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ों में। गीत और संगीत था तनिष्क बागची का। ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं वंस अपन अ टाइम फिल्म से। गाया है राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार ने।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया शंकर महादेवन और साथियों ने। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। फिल्म का नाम था कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दामिनी फिल्म से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे दामिनी फिल्म में। गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी नदीम शमर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है दीवार फिल्म से। स्वर है अलका याग्निक का।

दीवार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत रचना थी नुसरत बद्र की और संगीत रचना थी आदेश श्रीवास्तव की।

अभी आप सुन रहे थे अग्निपथ फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे थे रूप कुमार राठौर और अजय अतुल। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है।

0: वृंदावन केंद्र से।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, जिसका विषय है बरसात के मौसम में आंखों की सामान्य देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुफियान दानिश, इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
4: श्रोताओं, जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा तो लगता है, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। फसलें होती हैं, किसानों की अच्छी खासी सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बरसात आते ही कुछ बीमारियां भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, सोसाइटी में चल करके आती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आँखों में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जो इस मौसम में हमको प्रभावित करेंगी। आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर सुफियान दानिश साहब हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
5: नमस्कार सर
4: जी। तो बताइए कि ये बरसात का जो मौसम है, इसमें आँखों की अगर हम उचित सामान्य देखभाल से ही बात शुरू करें जी, तो बताइए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सावधानी के तौर पर हर व्यक्ति को कर ही लेनी चाहिए।
5: नमस्कार सर। पहले तो मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो को, जो उन्होंने मुझे अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए। हम लोग इसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कैंप वगैरह भी लगाते हैं, और हम लोगों को लगता है, हमारी संस्था को लगता है कि इस मामले में, बरसात में आँखों की बीमारियों की जागरूकता के लिए कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचें। उसमें सबसे पहले जो परेशानी आती है बरसात के मौसम में, वो है आई फ्लू। आई फ्लू होता क्या है एग्जैक्टली, जिसमें लोगों को अंदर अंधविश्वास बना हुआ है कि किसी की आंख लाल हो गई है, कीचड़ आता है तो आंखों में देख लो वगैरह वगैरह, तो उसको भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत करते हैं पहले हम कि आई फ्लू होता क्या है और कहां से आता है। तो बरसात के मौसम में अगर गंदा पानी आँख में चला जाए और आँख आप रगड़ मसल लें, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको पहले से आई फ्लू हो और उसने कोई एक सामान को छुआ, उस सामान को आपने छू के अपनी आँखों के आसपास या आँखों में लगा लिया, तो बहुत चांस है कि आपको भी आई फ्लू हो जाएगा।
4: तो इट मीन्स मतलब ये क्या वायरल आई फ्लू इस समय जो होगा?
5: हाँ जी सर। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे आपने कोविड के बारे में सुना होगा, तो एक तरह का ये आप मान लीजिए माइल्ड इन्फ्लुएंजा है आँख का, आँखों का कोविड भी हम बोलते हैं इसे। ये हाईली कम्युनिकेबल होता है। तो ऐसा देखा गया है कि घर में अगर किसी एक सदस्य को आई फ्लू हुआ है तो दूसरे को 90% चांस है कि उसको भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आई फ्लू वाले मरीज के साथ रहना कैसे है।
4: जी जी। मतलब अगर घर में एक हो गया तो फिर वहीं से शुरुआत, जो मैं कह रहा था कि वो बर्ताव जो व्यवहारिक तौर पर, कि एक व्यक्ति अगर आंख से पीड़ित हो गया है, उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो फिर थोड़ी सी एहतियात शुरू हो जाती है कि उसका कमरा अलग हो, उसकी तौलिया अलग हो, उसका बाथरूम अलग हो, तो थोड़ा सा मतलब आइसोलेशन।
5: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि एक वायरल बीमारी है तो मरीज जिस जिस चीज़ों को टच करेगा या उसकी आंखें जिस चीज़ों को टच करेंगी, जैसे कि बिस्तर हुआ, तकिया हुआ, या टॉवल हुई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो मरीज टच करता है, जैसे डोर का हैंडल हुआ, वो जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ वहाँ वो वायरस शेड होता है। ये जो इसका ड्यूरेशन है, कितने दिनों तक रहता है, वो 10 से 14 दिन है, और 14वें दिन के बाद भी 3-4 दिन तक उसमें से वायरल शेडिंग होती रहती है। इसी वजह से लोगों को लगता है सही हो गया, 2-3 दिन बाद एहतियात खत्म कर दी, फिर पता लगा घर में दूसरे सदस्य को हो गया। ऐसी स्थिति में बस थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि अपनी सारी इस्तेमाल की चीज़ें, यूज की चीज़ें जो हैं उसको बिल्कुल अलग कर देनी होती है, और जब बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए उसके करीबन 4 से 5 दिन के बाद वो सारी चीज़ों को अलग से धुलना चाहिए, सारे कपड़ों में मिक्स नहीं करना चाहिए, और मरीज को आँख में हाथ जितना कम लगा सकते हैं उतना कम लगाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। जो हम लोग ने कोविड के टाइम पे स्टेरिलीम यूज़ किया था, जो

0: आप हैंड सैनिटाइजर बोलते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी कम से कम फैलेगी। सबसे बड़ी बीमारी बरसात के मौसम में सर आई फ्लू
1: यही
0: है।
1: यही है उसमें। अच्छा, हमारे बहुत सारे, चूंकि हम ग्रामीण आबादी में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश है, उस समय बहुत सारे हमारे किसान भाई खेती का, किसानी का काम करते हैं। आपने कहा कि कुछ आँख में गया, उसको रगड़ लिया,
0: जी
1: या जो पानी है उसी तरह का उपलब्ध है उससे साफ कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है कि अक्सर हम चलते मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, इस समय कीड़े बहुत सारे
0: जी
1: होते हैं,
0: जी
1: उड़ करके आया, आँख में लग गया, उससे हिट भी हुई और उसका कुछ कोई पार्ट्स, पंख है
0: आँख
1: कुछ,
0: के अंदर रह गया।
1: अंदर रह गया, उस समय हम थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते तो इस सबसे भी थोड़ा परेशानी हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और
1: जी
0: ये बहुत बहुत इस बातचीत के लिए रेलेवेंट है।
1: जी
0: मैं पुतली रोग का विशेषज्ञ
1: जी
0: हूँ। जब ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो काम करते हैं, अगर कोई चीज़ आँख में चली जाए तो उनका जो सबसे पहला रिफ्लेक्स है, मतलब जो सबसे पहला काम वो करते हैं, वो सीधा आँखों में पानी डाल लेते हैं। दूसरा, वो कोई भी दवा की दुकान पे जाके, पंक्चर नाम से एक दवा आती थी
1: हाँ
0: पुराने
1: हाँ
0: ज़माने
1: हाँ
0: में,
1: जी,
0: जिसमें स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन
1: जो
0: होता
1: एक
0: था,
1: तरह का
0: मलहम
1: वो
0: टाइप होता
1: मलम
0: है,
1: टाइप का है।
0: तो
1: हाँ
0: उसको वो लोग लगा देते थे। अब वो ख़तरनाक चीज़ क्या है कि जैसे आँख के अंदर कोई भी कण गया, अगर वो वेजिटेटिव मैटर है, फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक है, जैसे कि लकड़ी हुई या पंख हुआ, अगर वो आँख के अंदर गया और आपने उसके संग के संग आपने स्टेरॉयड इस्तेमाल कर ली, तो बहुत चांस है कि आपको फफूंद का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको लगे कि आँख के अंदर कुछ गया है, सबसे पहला कार्य आप किसी आई सर्जन को दिखाएं, मशीन पे एक बार देख ले, अगर आँख के अंदर कोई चीज़ है, जैसे कि पंख हुआ या भी कोई भी कूड़ा करकट हुआ, उसको निकालना अनिवार्य है। अगर वो 5 से 7
1: पड़ा रहा तो
0: पड़ा
1: फिर
0: रह जाता है सर, वो पड़ा रह जाता है, हम उसको इम्पैक्टेड कॉर्नियल फॉरेन बॉडी बोलते हैं, तो उसको हम लोग लोकल या टॉपिकल एनेस्थीजिया देके उसको नीडल के द्वारा या फिर ब्लेड द्वारा हम लोग उसको साफ करते
1: और कई
0: हैं।
1: बार लगता भी है कि लाल आंख बहुत लाल हो गई, हमने पानी से धो लिया लेकिन कुछ किरकिरा रहा है, लेकिन क्योंकि हैबिट ऐसी पड़ी हुई है कि हम
0: जी
1: डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपना ही इलाज करते रहते हैं। आपने जैसा उसका किया, फिर वो जो आपने फफूंद, तो फंगल इन्फेक्शन जो
0: फंगल
1: कोविड
0: इन्फेक्शन
1: में हुआ
0: बहुत कॉमन
1: था,
0: है। जी
1: बहुत लोगों की
0: जी
1: आंखें
0: सर,
1: उसमें गई भी, तो बड़ा हानिकारक, खतरनाक।
0: बहुत खतरनाक भी हो सकता है ये। हम एक छोटी सी परेशानी का एक बड़ा आगे का परिणाम देख रहे हैं, उसमें छोटी से लेके बहुत बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं सर। इसमें मैं दो तीन बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कहना चाहूँगा। पहली बात तो, अगर आप बाइक से चलें, आपको अगर कोई चश्मे का नंबर नहीं है तो आप सादा चश्मा लगा के चलें,
1: चश्मा
0: ठीक।
1: लगा लो।
0: आप अगर खेती में काम कर रहे हैं, किसान हैं, तो बेहतर है एक प्रोटेक्टिव ग्लास आता है, सादा ग्लास आता है, उसको लगा के काम करें। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग होते हैं वो पुतली के इन्फेक्शन वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनकी आँख में कुछ चला गया और वो समय पर खा नहीं पाए और आगे जाके इन्फेक्शन से उनकी पूरी आंख गल गई, और या तो आंख बैठ जाती है या फिर आंख में फूली आ जाना बोलते हैं ग्रामीण
1: हाँ,
0: क्षेत्र
1: वो
0: में,
1: बिल्कुल वाइट हो
0: वाइटनेस
1: जाती
0: हो
1: है,
0: जाती है, कॉर्नियल
1: वहाँ
0: ब्लाइंडनेस हो जाती है सर।
1: ग्रोथ हो जाती है, वो
0: हाँ,
1: अलग से
0: तो
1: ही दिखती है, तब फिर वो चलते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो गया कि
0: जी
1: अब डॉक्टर के पास चलते हैं।
0: हाँ, तो वो स्थिति ना पहुंचे उससे पहले ही हमें दो तीन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर किसान भाइयों को जो खेती में काम करते हैं। एक सादा चश्मा भी अगर वो पहन लेंगे तो आधी आधी से ज़्यादा चीज़ें उनकी वहीं पे ही बेहतर हो जाएंगी। अगर भगवान ना करे किसी के साथ अगर चश्मे के बावजूद भी कुछ होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आँखों में पानी नहीं मारना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जो एक्चुअली लोग बोलते चले आ रहे हैं, ये एक मिथ है, एक
1: हाँ, कि
0: अंधविश्वास है
1: जैसे
0: कि
1: कुछ हो
0: खुद,
1: भाई सादा पानी से,
0: जी
1: साफ पानी
0: जी
1: से धो लो,
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: सर,
1: करना है।
0: बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं इसका वजह आपको बता देता हूँ। एक तो आप आंखों में हल्का पीलापन देखते होंगे लोगों के, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं आंखों में पीलापन आता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते आए हैं कि आंखों में ठंडा पानी मारिए उससे चीज़ें साफ होती हैं, एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। आँख के अंदर एक पानी की परत होती है जिसको हम लोग टीयर फिल्म बोलते हैं। जब आप सादा पानी मारते हो तो वो सादा पानी आपकी आँखों, नेचुरल पानी होता है आँख का, उसको खराब करता है और उससे आँखों में पीलापन आता है। पहली बात ये तो हो गया एलर्जी का कारण। दूसरा, कि आप जब भी आँख में पानी मार रहे हैं तो आपको पानी का स्रोत नहीं पता है, तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ खतरनाक कीटाणु जैसे स्यूडोमोनास हुआ या फिर कोई फंगस हुआ, एस्परजिलस वगैरह हुआ, वो आँख में पानी द्वारा चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट तरीका यही है कि आप एक डॉक्टर को दिखाइए, और

0: अगर आपको डॉक्टर अभी उस तक अवेलेबल नहीं है तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आती है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, जो ओवर द काउंटर कहीं भी मिल जाती है, किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। तो प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, आप डाल सकते हैं कि ये सोच के कि ये इन्फेक्शन ना बना दे, वो सबसे बेस्ट है। जो फार्मेसिस्ट और जो दुकान वाले हैं उनको भी ये बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि उनको स्टेरॉइड नहीं देनी है कभी भी किसी भी मरीज़ में, जब तक सर्जन खुद से एडवाइज़ ना कर दे, किसी को ये ना बोल दे कि इस सज्जन को या इस मरीज़ को इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत है। स्टेरॉइड ऐसे केस में, ऐसे मरीज़ों में फ़ायदा पहुँचाने के बजाय बहुत क्षति पहुँचाता है, मतलब वो इन्फेक्शन को करीबन 1 गुना से लेकर 100 गुना तक पहुँचा देगा। तो बेस्ट तरीका तो मेरा मानना यही
1: कि
0: है,
1: तुरंत आप जाएं और
0: और
1: एक
0: किसी एक
1: अच्छे
0: अच्छे सर्जन को दिखाएं जो मशीन

0: आप जाएं और
1: और
0: एक
1: किसी एक
0: अच्छे
1: अच्छे
0: हाँ
1: सर्जन को दिखाएं जो मशीन
0: जरूर
1: पे देख के एक बार कंफर्म कर ले कि आई फ्लू तो नहीं, आँख में कुछ रह तो नहीं गया, या कोई और इन्फेक्शन आदि तो नहीं चल रहा।
0: जिन आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं कम से कम उनकी हिफाजत के लिए अगर हम 10-5 किलोमीटर तुरंत चले जाते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: सर
0: तो एक बेहतर है। और गांव में भी अब इतनी सुख सुविधाएं हैं
1: जी
0: कि ठीक है गाड़ी ना सही लेकिन दोपहिया की मोटरसाइकिल सब पे है तो
1: जी
0: बैठ के चले जाइए। इसीलिए शायद हेलमेट भी अगर हम जैसे आपने कहा कि भाई किसानी में आप चश्मा लगा लो कर लो तो हेलमेट भी शायद
1: हेलमेट
0: इसीलिए
1: हेलमेट तो बहुत अनिवार्य है
0: इसीलिए
1: सर,
0: है
1: बिना
0: क्योंकि
1: हेलमेट
0: हम उस पे जा रहे हैं खुली 2 व्हीलर है। हेलमेट अगर आपने पहना है तो सामने से आने वाला कोई भी कीड़ा है वो कम से कम
1: टकराएगा
0: हिट
1: नहीं।
0: तो नहीं करेगा
1: जी
0: उसमें,
1: जी
0: तो बच सकते हैं इसमें। और कुछ जो विशेष इस समय ध्यान रखना है उसमें?
1: उसमें बस थोड़ा ये ध्यान रखना सर, हेलमेट तो पहने, लोग क्या करते हैं हेलमेट पहन लेते हैं, उसका शीशा नहीं गिराते सामने,
0: हाँ,
1: तो जब तक
0: फिर
1: वो शीशा
0: वो
1: नहीं गिराएंगे तो बात नहीं
0: जो
1: बनेगी
0: प्रोटेक्शन है वो मिल
1: वो
0: नहीं
1: पूरा 100%
0: पाता।
1: नहीं रहेगा।
0: हाँ, शीशा गिराना चाहिए और
1: जी
0: शीशा साफ भी होना चाहिए। कई बार शीशा बहुत पुराना होता है शायद इसीलिए भी ऊपर कर लेते हैं कि शीशा लगाया कुछ दिख नहीं रहा है
1: जी
0: उसमें, बारिश हो रही है।
1: आँख की सर इम्यूनिटी शरीर के बाकी भागों को देखते हुए थोड़ी सी कम होती है, भगवान ने इस हिसाब से आँखों को बनाया है। जब शरीर, जब बच्चा पेट माँ के पेट में बढ़ रहा होता है तो आँख का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। इवन ये बोलते हैं कि खून बनने से पहले पहले आँख बन जाती है, तो आँख के अंदर कुछ भाग ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो शरीर के लिए एक बाहर की तरह बिहेव करता है। तो भगवान ने एक एंटिटी होती है जिसको हम एकेड बोलते हैं, उसमें इम्यूनिटी अपने आप कम रहती है आंखों के अंदर, इसलिए छोटा सा छोटा इन्फेक्शन भी बहुत ही विभत्स रूप ले सकता है आंख के अंदर। तो बेहतर है आंखों के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखा
0: और
1: लें।
0: अब तो बहुत एडवांस भी हो गया है वो, इतना अच्छी आंखों की मतलब देखभाल के
1: बिल्कुल
0: साधन
1: सर
0: हो गए हैं और बहुत आसपास हमारे मिल रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: इन चीज़ों का फायदा उठाना चाहिए। वो काले पानी और उसकी मोतियाबिंद की समस्या ये भी ग्रामीण क्षेत्र में
1: बहुत
0: बहुत
1: ज़्यादा
0: है।
1: है। ये मोतियाबिंद कई तरह के होते हैं, जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा लोगों में होता है वो उम्र वाला मोतियाबिंद होता है, जो 50 से 60 के बाद से चालू हो जाता
0: जो
1: है
0: एज के साथ आ ही
1: एज।
0: जाता है।
1: जी जी ठीक। हमारे भारत देश में सबसे पहले जो आंखों के सर्जन थे वो सुश्रुत जी थे,
0: जी
1: जिन्होंने सबसे पहला ऑपरेशन काशी में किया था।
0: हाँ हाँ
1: ठीक, तो हम लोग पहले क्या करते थे, और उसमें इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये धारणा कहाँ से आ रही है कि बरसात में नहीं कराना, गर्मी में नहीं कराना ऑपरेशन, वो धारणा बहुत पहले ज़माने से चली आ रही है। उसमें हम मोतियाबिंद पका लेते थे, और फिर एक क्रायोप्रोब करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम आँखों को बड़ा सा चीरा लगाते थे और उसमें से पके हुए मोतियाबिंद को खींच के बाहर निकाल लेते थे, और हम टांके मारते थे करीबन 40 सिल्क या 40 नायलॉन से बड़े टांकों से, और 2 बोरियां लगा के मरीज को बीच में 48 घंटे के लिए लिटा दिया जाता था। ये पुराने ज़माने की धारणा है, और हिलने को मना कर दिया जाता था, आँख में कुछ जाना नहीं चाहिए। ये काम हम लोग सर्दियों में करते थे,
0: क्योंकि
1: और
0: उस समय पसीना नहीं आता, गर्मी
1: जी
0: नहीं होती, आदमी आराम से
1: बचता
0: लेट
1: है
0: सकता है।
1: बचता
0: जी जी
1: है
0: जी
1: तो। और उस टाइम ये बड़ा फैशन था कि मतलब जब तक मोतिया पकेगा नहीं तब तक हम निकालेंगे नहीं। उस ऑपरेशन से करीबन 40% की सक्सेस रेट रहती थी, 60% लोगों में कभी कुछ हो गया, कभी आरडी हो गया, आरडी रेटिनल डिटैचमेंट को बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत थी। तो जैसे जैसे विज्ञान ने आगे तरक्की की, हमने लेज़र का आविष्कार किया, लेंस का आविष्कार किया, और ऐसे ऐसे लेंस आ गए हैं जिसमें हम लोग अगर लेंस का प्रतिरोपण कर दे तो दूर और पास की रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो लेज़र इतना छोटा होता है, 2.8 से 3.2 mm के अराउंड का छोटा चीरा लगता है जिसमें कोई टांका वगैरह नहीं लगता, और सर्जरी इतनी आधुनिक हो गई है कि अब तो हम लोग ब्लॉक भी नहीं करते, मतलब हम लोग अनस्थीजिया सिर्फ ड्रॉप द्वारा देते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: और
0: हाँ
1: मरीज़ को ऑपरेशन करते ही हम उनको काला चश्मा पहना देते हैं। इसको हम लोग टॉपिकल फेको बोलते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन लेज़र द्वारा ऑपरेशन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। इस ऑपरेशन को आप किसी भी मौसम में कराएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने ऐसा भी किया है, मेरा एक मित्र सर्जन है, मैंने उसको ऑपरेशन किया, उसने अगले दिन किसी और को ऑपरेशन किया, तो ये इतना आधुनिक है कि आप अगले दिन से काम पे जा सकते
0: मतलब
1: हो।
0: बहुत आसान हो गया है,
1: बहुत
0: उसमें
1: ज़्यादा
0: डरने की आवश्यकता नहीं
1: बिल्कुल
0: है,
1: भी
0: वेट
1: नहीं,
0: करने की
1: बिल्कुल भी नहीं
0: आवश्यकता
1: सर।
0: नहीं है, और कोई मौसम बहुत अब वो नहीं रह गया क्योंकि अब
1: मोतियाबिंद
0: तो
1: आपको पकाना नहीं है,
0: पकाना
1: आप
0: नहीं
1: बहुत
0: है।
1: पहले ही आ जाना है, और ऑपरेशन करके लेंस डलवाने से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छी हो जाती है एक्चुअली।
0: जी
1: कभी कभी क्या होता है, हल्का मोतिया होता है, धुंधलापन है, कोई चीज़ आके टकरा गई।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल, आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही अन्य लोगों से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की अपील भी की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह से विकास हुआ है उससे देश की जनता खुश है, आम आदमी की आय बढ़ी है। छात्रों में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली कैंट छावनी में खगोलीय लैब बनाई गई। इस लैब का उद्घाटन रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता ने किया। तकनीकी उपकरण से लैस इस लैब के जरिए बच्चे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। मुख्य अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड डॉक्टर तनु जैन ने कहा कि छात्रों में हमेशा ब्रह्मांड को लेकर काफी उत्सुकता होती है और इसी उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली छावनी परिषद ने इसकी शुरुआत की है।
2: साइंटिफिक टेम्पर ऑफ स्टूडेंट्स डेवलप करने के लिए एक हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की हमने लैब्स यहाँ डेवलप करी हैं। हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया और बेसिक बेसिक इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं जिससे कि बच्चों को ये पता रहे कि कौन से इक्विपमेंट्स का क्या मतलब होता है।
1: बरेली में महाभारत कालीन लिलौर झील पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन बनने जा रही है। गत दिनों झील पर आयोजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील पर किए जाने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। नौका विहार टॉय ट्रेन के बाद इस झील के किनारे सरकार ने पर्यटकों के रुकने के लिए कॉटेज भी बनवाए हैं। इसके साथ ही इस झील पर मल्टीपर्पज हॉल व टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगभग 3 करोड़ की लागत से इन कार्यों का पूरा किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर इस झील पर आए थे तो यक्ष के साथ उनका संवाद यही हुआ था, इसलिए इस झील का काफी महत्व है। अब इस झील को जीवांत करने के बाद पर्यटन मंत्रालय इसे सैलानियों के लिए बेहतर बना रहा है। पशुओं में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुक्त टीकाकरण पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीकाकरण की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीमों को रवाना किया। पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में ये अभियान चलाया जाएगा जिससे कि पशुओं में संचारी रोगों को बचाया जा सके। टीकाकरण अभियान को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानव ही नहीं बल्कि पशुओं की भी चिंता करती है। जिस समय पर ये टीकाकरण शुरू किया गया है ताकि पशुओं में खुरपका मुंहपका जैसे संक्रामक रोग ना फैल सके। 22 जुलाई को बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित परियोजनाओं और अन्य शिकायतों की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन भी शिरकत की।
0: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: भगवान शिव की आराधना के लिए विख्यात श्रावण मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। यह मास पर्यंत शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक विभिन्न शिवालयों में करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सावन मास के प्रत्येक शिवालयों में जलाभिषेक किए जाते हैं। जनपद सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में सावन मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सीतापुर मुख्यालय स्थित श्यामनाथ मंदिर समेत बिस्मा के पत्थर शिवाला और नैमिषारण्य समेत अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूरे सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध आयोजन समेत मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों का जल भरकर भक्तगण विभिन्न शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है और श्रावण ले जाने वाले भक्तों को श्रावणिया कहा जाता है। सावन में श्रावणियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है।
4: लगातार पुलिस द्वारा पहले बैठकें की गई, सभी टीचर्स जो संचालक उनसे बात हुई है।

0: दुकान और चलाते हैं कमेटियां, हम सबसे बात हुई है, जितने मंदिर है उसके सबके हमारी ड्यूटी कल सुबह से रहेगी, पोस्टर पार्टी हमारी रहेगी, सेक्टर दोनों स्कीम में मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी लगा दी है, बहुत शांतिपूर्वक पूरा कवर को मुहैया कराया जाएगा।
1: नजूल भूमि समेत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों और प्लाटिंग पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपतकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। इस अभियान में जहां प्लाईवुड फैक्ट्री जैसी प्रसिद्ध इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, वहीं ऐतिहासिक रंपा महल को भी खाली कराया गया है। पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हत्याकांड में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस हत्याकांड में शामिल गुनाहगारों को जेल के पीछे भेजा जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा हो। करीब 2 वर्ष पूर्व पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की शरेआम गोली मारकर असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सीतापुर में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सुजीता कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, किंतु महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण को सर्वाधिक महत्ता देते हुए वे अपने स्तर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्म संकोच और भय के अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें और उनके निस्तारण के लिए प्रयास करें। यदि जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे महिला कल्याण विभाग समेत राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग महिलाओं के हितों के लिए सदैव अग्रसर रहता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय है बढ़ता तापमान और पिघलते ग्लेशियर। आलेख और वचन है हरिनारायण कोहली का।
1: मानव की प्रकृति विरोधी नीतियों एवं क्रियाकलापों के कारण संतुलित जलवायु के कदम डगमगा गए हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का

प्रमुख दुष्परिणाम है। मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जीवाश्मीय ईंधन यानी पेट्रोलियम, कोयले के दहन, वन विनाश, औद्योगिकरण इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि होती जा रही है। इसी प्रकार औद्योगिकरण, नगरीकरण, अवशीतन उपकरणों के बढ़ते प्रयोगों से ओजोन परत का क्षरण निरंतर बढ़ रहा है। इन सभी कारणों से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। जलवायु आंकड़ों से कई नए तथ्य स्पष्ट हुए हैं। 1990 से 2000 का दशक पूरी शताब्दी में सबसे अधिक ताप वाला था। 1998 के प्रारंभ के 6 महीनों का तापमान विगत 120 वर्षों में सर्वाधिक था। एक अनुमान के अनुसार 21वीं सदी तक वायुमंडलीय तापमान में 1 डिग्री से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाएगी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 2050 तक विश्व तापमान में 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय हिम शिखरों पर स्थित ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो बर्फ के पिघलने से समुद्र की सतह 60 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। पृथ्वी के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर ध्रुवीय क्षेत्रों के विशाल ग्लेशियर पिघल जाएंगे तथा समुद्री जल स्तर में 1.5 मीटर तक वृद्धि हो सकती है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि में अनेक समुद्र तटीय भागों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। सर्वाधिक खतरा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा कैरेबियन सागर के अनेक द्वीपों के समुद्र में डूब जाने का है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने पर बोस्टन से लेकर मुंबई तक सैकड़ों समुद्र तटीय नगर जल समाधि ले लेंगे। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि से सर्वाधिक चिंतित देशों में से एक मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गईम ने कहा था कि समुद्र तल में बढ़ोतरी कोई फैशनेबल वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं है बल्कि एक तथ्य है। मालदीव के 200 निर्जन द्वीपों में से एक तिहाई समुद्र में समा गए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप तथा आर्कटिक समुद्र में बर्फ के अधिकतम विस्तार की सीमा में कमी आने लगी है। दक्षिण प्रशांत महासागर के 2 द्वीप समुद्र में समा गए हैं। किरीबाती और तवालू द्वीपों के आसपास के कई द्वीपों को भी खतरा है। ऐसी आशंका जताई गई है कि 2030 तक इन द्वीपों में से कोई नहीं रहेगा। ग्लेशियरों के पिघलने से उनका आकार सिमटता जा रहा है। जिन नदियों के उद्गम स्रोत पर्वतीय हिमनद है उनमें भीषण बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। हिमालय क्षेत्रों में भी अनेक ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं। गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री हिमनद हजारों वर्ष पूर्व गौरीकुंड तक स्थित था जो आज 19 किलोमीटर दूर गोमुख तक पहुंच गया है। ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी और सूर्य की किरणों का परावर्तन कम होगा तथा तापमान में और वृद्धि होगी। यदि हम बढ़ते तापमान के दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें भूमंडलीय ताप में वृद्धि से संबंधित कारणों को जानकर उनका निराकरण करना होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ाना होगा, वन विनाश रोकना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे घातक रसायनों का उपयोग न्यूनतम करना होगा तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लानी होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था बढ़ता तापमान और पिघलते ग्लेशियर। आलेख और वचन था श्री हरि नारायण कोहली का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं गांधी चर्चा, जिसका विषय है अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। ये प्रस्तुति है आगरा केंद्र की।

प्रस्तुत हैं अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। मैं जानता हूं कि यदि मैं अधीर बन जाऊं तो मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे। दुनिया की दृष्टि में मेरा निरहंकारी होना कोई कीमत नहीं रखता। जहां अहिंसा है वहां असफलता असंभव है, इसलिए जहां असफलता दिखाई पड़े कहना ही होगा कि वहां अहिंसा नहीं है। मुझमें अहंकार अधीरता आदि दोष हों तो मैं उनका साक्षी नहीं बन सकता। कुछ अंशों में दूसरे ही बन सकते हैं, इसका सच्चा साक्षी तो ईश्वर ही है। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी सिद्धि का साधन। मैंने तलवार के न्याय को सदा के लिए छोड़ दिया है। अहिंसा की शक्ति की तरह अहिंसक की शक्ति भी अमाप होती है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। इसलिए भविष्य में ईश्वर उससे क्या कराएगा से वह कैसे कह सकता है। अहिंसा उत्तम है, लेकिन अगर मैं सांप का भय छोड़ नहीं सकता हूं तो उस हालत में क्या करूं। मन से तो उसे मार चुका हूं, कर्म से मारने से हिचकिचाता हूं। तब धर्म कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक मारो, उसे नहीं मारने का व्यवसाय व्यर्थ है। शक्ति से ज्यादा काम करने का दोष मुझमें कम है। कहने का मतलब यह है कि अहिंसा की प्रवृत्ति में मर्यादा से अधिक काम करने की गुंजाइश नहीं है। जिसमें मर्यादा नहीं उसमें अहिंसा नहीं। मुझमें तो कमी है ही, सब कामों में अहिंसा होनी चाहिए। जिससे बात करो प्रेम से करो। ब्रह्मचर्य और अहिंसा का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए इन्हें शारीरिक तप कहा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है, इसके बारे में मुझे भी शंका थी, अब नहीं है। दोनों का संबंध शरीर के साथ है। मनोविकार का असर शरीर पर होता है, इसी तरह क्रोधादि हिंसक विकारों का भी। अगर शरीर न होता तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य अर्थविहीन हो जाते। अर्थात दोनों शरीर के धर्म हैं और दूसरे शरीर के साथ धर्म रखते हैं। अहिंसा या प्रेम को दुख लगे तो अहिंसक दुख हिंसा करे, उसी का लगना चाहिए। कोई मुझे गाली दे तो उससे मुझे दुख क्यों होना चाहिए। अहिंसा हिंसक के प्रति बनाई जा सकती है। अहिंसक के प्रति अहिंसा कैसी? सूर्य के सामने लालटेन, सत्य भूयात प्रियम भूयात। यह व्यवहार वचन नहीं बल्कि सिद्धांत है। प्रियम का अर्थ अहिंसक है। अहिंसक सत्य के संबंध में यह होता है, अवश्य है कि उस समय वह चुभता है, लेकिन परिणाम में वो अमृतमय लगता ही चाहिए। यह अहिंसा की अनिवार्य कसौटी है। अहिंसा सबका भला चाहती है। ईश्वर के यहां सबकी भलाई का ही न्याय होता है। वह कैसे किया जाता है और कैसे न्याय में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो खोजना हमारा काम है।

इस नीति के विरुद्ध नीति प्रस्तुत करना हमारा काम कदापि नहीं। सत्य की खोज करते हुए अहिंसा की जरूरत देखी, इसलिए उसे विकसित करने का प्रयत्न किया। उसमें से उपरिग्रह की आवश्यकता प्रकट हुई, पर ब्रह्मचर्य के बिना यह सब अधूरा लगा। इसी सिलसिले में सत्याग्रह की खोज हुई, उसके निमित्त से निर्भयता आई, इसके बाद अस्वाद का नंबर लगा। लेकिन अब देखता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अस्वाद आवश्यक है। इन गुणों को जिस हद तक विकसित कर सका हूं, वह गहरे विचार और भारी प्रयत्न का परिणाम है। इन सब के मूल में ईश्वर पर अविचल श्रद्धा तो है ही, अहिंसा डरपोक का या नामर्द का धर्म नहीं, वह बहादुरों का और मर मिटने वालों का धर्म है। जो तलवार से लड़कर मरते हैं वे अवश्य बहादुर हैं, लेकिन जो बिना मारे धैर्यपूर्वक खड़ा रहकर मरता है वह अधिक बहादुर है। अतएव जो मार के डर से चावल के बोरे मुफ्त दे देता है वह डरपोक है, अहिंसक नहीं। वह अहिंसा के तत्वों को जानता नहीं। मार के डर से जो स्त्रियों का अपमान सहन करता है वह मर्द न रहकर नामर्द बनता है। वह न पति बनने के योग्य है, न पिता और न भाई। ऐसे लोगों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। तो ये थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। और अब आइए सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। इसमें आपने सुना अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। ये आगरा केंद्र की प्रस्तुति थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं श्रद्धा व्यास के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा व्यास के गाए भजन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम जो आधारित है मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर। प्रस्तुति है देव राज कृष्ण दीक्षित की।

जी हाँ श्रोताओ, ये आवाज है मोहम्मद रफी की, हिंदी सिनेमा की वो आवाज जो आज भी कानों में न केवल रस घोलती है बल्कि दिल को एक अलौकिक सुकून का एहसास भी कराती है। मोहम्मद रफी, जिन्हें सुरों के बादशाह, मखमली आवाज के धनी और शहंशाह तरन्नुम के नाम से भी जाना जाता है। 31 जुलाई को मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उस महान पार्श्व गायक, महागायक को।

श्रोताओं, 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर पंजाब में जन्मे मोहम्मद रफी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले फकीर का पीछा किया करते थे जो कि उधर से गाता हुआ जाया करता था। फिर रफी उसकी नकल किया करते थे। धीरे धीरे लोगों को उनकी आवाज पसंद आने लगी। ये तो केवल शुरुआत थी। सन 1944 में मोहम्मद रफी साहब का पहला गीत था जो एक पंजाबी फिल्म के लिए उन्होंने गाया था और संगीत निर्देशक थे श्याम सुंदर। सन 1946 में जब रफी साहब मुंबई आए तो संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में उन्हें गाने का मौका दिया और फिर उसके बाद शंकर जयकिशन, एस जी बर्मन, नौशाद जैसे संगीतकारों ने रफी साहब से गीत गवाए जो काफी लोकप्रिय हुए। वर्ष 1960 में फिल्म आई 14वीं का चांद। इस फिल्म के शीर्षक गीत के लिए मोहम्मद रफी साहब को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

0: संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत करियर की शुरुआत की मोहम्मद रफी के स्वर के साथ, और वो फिल्म थी पारस मणि। इस फिल्म का वो गाना जो लोगों की जुबां पर आज भी तरोताजा है, जिसे रफी साहब ने लता जी के साथ गाया।
1: वो जब याद आए

वर्ष 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के गीत संगीतबद्ध किए गए तो रफी साहब के द्वारा गाया हुआ वो गीत लोकप्रियता के शिखर पर था।

0: सन 1965 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती का वो गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी साहब को न केवल फिल्म फेयर पुरस्कार मिला बल्कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। और फिर उसके बाद मोहम्मद रफी हर संगीतकार की पहली पसंद बन गए। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफी साहब को याद करते हुए कहा था,
1: मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और तमाम संगीत

0: तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी साहब को न केवल फिल्म फेयर पुरस्कार मिला बल्कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। और फिर उसके बाद मोहम्मद रफी हर संगीतकार की पहली पसंद बन गए। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफी साहब को याद करते हुए कहा था,
1: मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और तमाम संगीत प्रेमियों की तरफ से उनकी लाफानी यादों को श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करता हूँ। बात सन 44 या 45 की है कि मैं कारदार प्रोडक्शन में अपने काम में मसरूफ था कि एक नौजवान मेरे पास आया। आदाब और सलाम के बाद उस नौजवान ने मुझे एक खत दिया जो कि मेरे वालिद साहब ने लिखा था, जो इस नौजवान के बड़े भाई हमीद साहब ने मेरे वालिद साहब से हासिल किया था और जिसमें ये पुरजोर सिफारिश की गई थी कि इस नौजवान को गाना दो और ये नौजवान बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक है। मैंने उस नौजवान से एक आध गाना सुना और उसकी आवाज से मुतासिर हुआ और कहा कि एक दिन तुम जरूर अच्छे और बड़े गायक बनोगे, और ये भी कहा कि कभी कभी मेरे पास आते जाते रहना। इब्तदाई दौर में मैंने उस नौजवान को कोरस में जगह दी और एक कोरस हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा शायद आप में से कुछ की यादों में महफूज होगा। उसके कुछ अरसे बाद मुझे फिल्म दिल लगी में उसकी आवाज को तन्हा तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मिला और इत्तेफाक देखिए कि वो गाना मुल्क के कोने कोने में गाया गया। मेरे साथ ये पहला गाना जो मशहूर तरीन गानों में शुमार किया गया, रफी साहब ने सिर्फ न सिर्फ अपनी शोहरत का सामान किया बल्कि मुझे भी इज्जत बख्शी।

उसके बाद रफी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको इज्जत मिली, उनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, उनकी आवाज का जादू सारी दुनिया में रंग दिखाने लगा। उनको वाकई इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, मगर उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। एक फलदार दरख्त की तरह के जितने फल आते गए उतने ही वो झुकते गए। उनके दिल में खौफ खुदा और सच्चाई से प्यार भी उतना ही बढ़ता गया। गरीब परवरी, इंसान दोस्ती उनके किरदार का हिस्सा बनती गई। सच और खुदा, यही दो ताकतें थी जिनके आगे उनका सर झुकता था। और कहते थे कि तुम जैसा यहाँ करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया एक मंदिर।

संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी साहब जितने सुरीले और महान गायक थे, गायकी में आज भी उनका कोई सानी नहीं। कहते हैं व्यक्तिगत जीवन में रफी साहब बड़े ही समर्पित और शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। सादगी, हसमुख स्वभाव, लोगों के काम आना और दरियादिली के लिए लोग आज भी उनको याद करते हैं।

रफी साहब की गायकी में जीवन के हर पहलू से जुड़ा रंग शामिल था, चाहे वो रोमांटिक गीत हो या भजन, या फिर गजल हो या हास्य गीत या फिर सैड सॉन्ग, हर मूड के गीत रफी साहब ने गाए जो सदा के लिए अमर हो गए।

श्रोताओ, आज ही के दिन 31 जुलाई सन 1980 को संगीत की दुनिया का वो बेताज बादशाह, गायकी का वो अमर सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया, मगर अपने गाए हुए गीतों के साथ मोहम्मद रफी आज भी हम सब के दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। तुझको

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मोहम्मद रफी के गाए ही कुछ और गाने आपको सुनवाते हैं।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा था कैफी आजमी ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने।

मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत था, संगीत था रोशन का और फिल्म का नाम था आरती।

0: साथियों, ये वो आवाज़ है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि थी, उसी पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: ला ना पाओगे हो तुम मुझे।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं। अब आपको सुनाएंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं, आपका इलाज करने आई हूँ। क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: आपका रेडियो मृत मित्र सुरेश जाधव, नेहरू चौक पैठन, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। दीदी
0: कैसे हैं? सुरेश जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: क्या बात है बहन जी, आपकी बहुत प्यारी प्यारी आवाज में आप एकदम दिल खुश हो गए।
0: अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है हम पर कि अगर हमारे कुछ श्रोता हमारी आवाज सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है।
1: और देखिए ना, मैं महाराष्ट्र से नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव यहाँ पर वाराणसी में पधारा हूँ। आज भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं।
0: वाह,
1: और वाराणसी जी, वाराणसी में से बात कर रहा हूँ बहन जी। मैं आज इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ हमारे साथ प्रसन्न है और एकदम वातावरण भी एकदम बहुत बहुत बढ़िया है बहन जी।
0: बहुत बहुत आनंद की बात है, बाबा के चरणों में हम भी यहीं से प्रणाम निवेदित करते हैं।
1: क्या बात, क्या बात है।
0: और बाबा का आशीर्वाद हम पर और हमारे सभी श्रोताओं पर बना रहे है ना। तो अब श्रावण मास में तो विशेष रूप से भोलेनाथ की कृपा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते रहते हैं। तो आज तो आप भोलेनाथ की ही नगरी से हमें फोन कर रहे हैं,
1: क्या बात है। जी जी,
0: अभी अपनी पसंद भी बता दीजिए।
1: आप भोलेनाथ की बात हो गई तो भोलेनाथ का गीत सुना चाहूंगा बहन जी। मैं आज
0: जी
1: फिल्म का नाम है बैराग, गायक है महेंद्र कपूर जी। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे।
0: बहुत सुंदर गीत आपने चुना है, सुनिए पसंद का ये गीत।
1: और साथ में मेरी मिसेज भी आई हुई है जो अनीता जाधव।
0: जी जी, स्वागत है अनीता जी का भी कार्यक्रम में। और अब भी सुनिए पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है इंद्रभान जी कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। छुट्टी परेड हूँ मैडम, मौसम एकदम जबरदस्त बादल किया हुआ है और बादल का आना जाना है, कहीं पर कम बादल किया है, कहीं पर ज्यादा बादल किया है, पानी गिरने के कगार में है, हो सकता है थोड़ी देर बाद गिरेगा। हवा भी बहुत सुंदर चल रहा है।
0: चलिए, मतलब मौसम सुहावना है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं।
1: जी मैडम, और इच्छा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के भी गीत बता रहा हूँ। फिल्म का नाम है जख्मी, सुनील दत्त जी का फिल्म का गाना है और गीत ये बोले, जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा न जाए रे, गायक किशोर कुमार आशा भोसले।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता में सांवरिया गांव थेरावर तहसील कुमेर जिला ढीगर।
0: जी स्वागत है सांवरिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और
0: आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो आपके भी कोई गुरुदेव हैं या नहीं?
1: है, आप ही हैं हमारे लिए तो ब्राह्मण विप्रदेव, हमारे लिए तो गुरु महाराज है। हमारे लिए तो गुरु ही आप, विप्रो ब्राह्मण हो आप, हमारे लिए तो साहब, हम तो
0: अच्छा,
1: इनको ही मानते हैं गुरु। तो
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात कही
1: गुरु
0: आपने
1: शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से वो प्रकाश की ओर ले जाना। तो
0: जी।
1: गुरु और लघु, लघु छोटा होता है, गुरु बड़े होता है, तो
0: हाँ
1: गुरु तो बड़ा ही होता है साहब। देखो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सावन मास का भी शुभारंभ होने जा रहा
1: शुभारंभ होता है,
0: है ना?
1: बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल।
0: तो अभी जो सावन का महीना है, वो तो विशेष रूप से भोलेनाथ को हम विशेष उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और कितने सुंदर सुंदर त्योहार इस पर्व इस माह में पड़ते हैं, और विशेष सुखद अनुभूति देने वाला होता है ये सावन मास,
1: श्रावण मास,
0: है ना?
1: बिल्कुल सत्य बात है आपकी।
0: हाँ, तो आज आपसे जानना चाहूंगी, क्या सुनना चाहेंगे इस अवसर पर?
1: आप सुनवाइए, आन मिलो सजना, तेरे कारण मेरे साजे।
0: ठीक है, सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए। रामकुमार
1: शादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: रिवाड़ जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जब आकाशवाणी मथुरा के साथ प्रोग्राम का जब आनंद लेते हैं तो अपने आप ही हाल बढ़िया हो जाते हैं।
0: ओ, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो रिवाड़ जी, आप क्या करते हैं, कुछ बताइए ना अपने बारे में।
1: बिल्कुल, वैरायटी स्टोर की शॉप है
0: अच्छा,
1: और बचपन से रेडियो सुनने का शौक है। लगभग 50 साल हो गए रेडियो के साथ जुड़े हुए।
0: हाँ, तो रेडियो आप में बसा है और आप रेडियो में बसे हैं।
1: बिल्कुल, रेडियो मेरा गुरु है, मेरी प्रेरणा है, मेरा शिक्षक है, सब कुछ रेडियो ही है मेरे लिए।
0: जी, तो बस मन का रेडियो बजता रहे और आप रेडियो सुनते रहें। और बताइए, पसंद क्या रहेगी आज?
1: सावन का महीना लग चुका है तो सिंदूर फिल्म का गीत है, पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: ठीक है,
1: और सभी हमारे श्रोताओं को जो आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना लग चुका है
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: बारिश का मौसम है, तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, उनकी रक्षा करें।
0: जी बिल्कुल, और वृक्षों की सुरक्षा भी करें और वृक्षारोपण भी करें। तो बहुत सुंदर संदेश के साथ अपनी पसंद का सुनिए ये गीत।
1: यही गीत मैं अपनी वाइफ चंद्रकला रिवार जी के नाम करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे हम आपसे बात करेंगे उन गुरुओं के संदर्भ में जिनके कारण आपके जीवन को दिशा मिली। जी हाँ श्रोताओं, आपके जीवन में आपको किस गुरु या किस शिक्षक ने सबसे अधिक प्रेरित किया और उनसे आपने क्या सीखा, इसी संदर्भ में भेजिएगा अपने एसएमएस कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में।

जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आज का हमारा विषय रहेगा कि आपके जीवन में किस गुरु या शिक्षक ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया और उनसे आपने क्या सीखा। तो बस भेज दीजिए अपने एसएमएस कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में, नंबर वही 94 122 25 575।

सूर्य फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे मोहम्मद अजीज और साथियों के। श्रोताओं, हम आपको पुनः स्मरण करा दें, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम आपसे बात करेंगे।

गुरुओं की या उन शिक्षकों की जिन्होंने आपके जीवन को नई दिशा प्रदान की या जिन्हें आपने बहुत सम्मान दिया और जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे। तो बस ऐसे ही गुरुओं की बात आज के कार्यक्रम में हम करेंगे। तो अपने SMS हम तक जरूर भेजिएगा नंबर 94122 25575 पर।

बैजू बाबरा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे मोहम्मद रफी और साथियों के। श्रोताओं, हम आपको स्मरण करा दें, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे हम बात करेंगे आपके गुरुजन के संदर्भ में। जी हां, आपके जीवन में ऐसे कौन से गुरु या शिक्षक रहे जिन्होंने आपके जीवन को प्रेरित किया। ऐसे ही कुछ गुरुओं की प्रेरित करने वाली बातें या कुछ ऐसी स्मृति आप हमारे साथ साझा कीजिए कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं हमारा फोन नंबर क्या है। नहीं जानते, पहली बार जुड़ेंगे कार्यक्रम से, तो बता दें 94-122-25-575। जी हाँ, अपने संदेश हम तक जरूर पहुंचाइएगा।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे लता मंगेशकर के। श्रोताओं, हम आपको पुनः स्मरण करा रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। लगातार आपके एसएमएस हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने अभी जो हमारा आज का विषय है उस पर अपना संदेश लिखा है। तो झटपट से अपना संदेश हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आज का विषय है किस गुरु ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, या आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है जिसने आपको प्रभावित किया, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो या आपके जीवन में शिक्षक रहे हो जिनकी बातों ने आपको प्रभावित किया। तो कुछ ऐसे ही प्रसंग, कुछ ऐसी ही बातें आप हम तक जरूर भेजिए कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में 94-122-25-575। नंबर तो याद होगा वैसे आपको, पर फिर भी नोट कर लीजिए।

0: जीव, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि।
1: प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है।
0: भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
2: हम हरि भजन करेंगे,
3: हरि कीर्तन करेंगे।

फिल्म हरि दर्शन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। जी हां श्रोताओं, अब आरंभ होता है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। और आज इस कार्यक्रम में हूँ मैं आपकी दोस्त और कार्यक्रम की होस्ट आरजे रश्मि। जी हाँ श्रोताओ, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है और कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु केवल पढ़ाना नहीं सिखाते, हमें जीवन जीना सिखाते हैं। वे हमारी कमियों को पहचानकर हमें शक्ति का जो मार्ग है वो दिखाते हैं। माता पिता हमें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु हमारे जीवन को उद्देश्य देते हैं। तो इसी सुंदर भावना के साथ हमारा आज का विषय है गुरु जो जीवन को दिशा देते हैं। और आज का हमारा प्रश्न है, आपके जीवन में किस गुरु या शिक्षक ने आपको प्रेरित किया और उनसे आपने क्या सीखा। तो आपके एसएमएस हम तक पहुंच रहे हैं और जल्दी से मैं इन्हें कार्यक्रम में शामिल कर रही हूं। ये एसएमएस हमें भेजा है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। श्रोता हैं हमारी तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आपने लिखा है रश्मि शर्मा जी, गुरु अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। हमारे गुरु जी हमारे पिताजी हैं, तो वो बहुत ही सुंदर आवाज के मालिक थे। वाह क्या बात है। और कुछ उनका जो हमने सीखा उसे आज हम टूटा फूटा गा लेते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम प्रतिदिन लेते हैं और उनकी फोटो को देखकर प्रफुल्लित भी होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हमारे बड़े ही हमारे लिए गर्व की बात होती है। माता पिता को यूं तो हम माँ को अपनी प्रथम शिक्षक भी मानते हैं, लेकिन अगर उनका कोई ऐसा सद्गुण, चाहे वो संगीत की शिक्षा की ही बात जैसा कि आपने की, अगर हम कोई ऐसा गुण जो उनके अंदर विद्यमान था और उसे हम आत्मसात कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, ये एक हमारे पास में SMS आया है इन श्रोताओं का। लिखने वाले ये हमारे

श्रोता हैं, राम छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, कीरत राय वाधवानी, प्रतीप कुमार साहू और पूरा मखीजा परिवार। आप लिखते हैं, मेरे गुरु दीक्षा सतगुरु रायपुर के हकीम राज्य वैद्य श्री अर्जुन सिंह जी ने नाम दान व जीवन में जीने की बातें सिखाई। तो ये बात आपने लिखी और इसके साथ ही एक और बात आपने लिखी है कि मेरे भाई स्कूल के शिक्षक श्री बी एल सोनी जी ने सभी विद्यार्थियों से पूछा, तुम क्या छोड़ सकते हो वृद्ध होने पर? मैंने कहा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, जिसे मैं अभी भी जीवन में फॉलो कर रहा हूं। वाह, क्या बात करी आपने। क्रोध से तो बहुत सारी अप्रिय घटना घटित हो जाती है और आपने वही छोड़ दिया, यानी आप तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कवर आपको मिल गया। ये आपने जो शपथ ली या जो सही आपने निर्णय लिया। और देखिए, ये एसएमएस हमारे पास में आया है मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी जी का। ये लिखते हैं, मेरे जीवन को गुरु ने सही दिशा, सच्ची सोच और आत्मविश्वास की प्रेरणा दी। गुरु ने सिखाया कि ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास से हर कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सीख ने मुझे अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच और जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिया। आज जो भी अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, उसमें मेरी गुरु के मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सुंदर मैसेज। और ये एसएमएस हमें लिखा है इन श्रोताओं ने, सुरेश यादव नेहरू चौक पैठण से, हमारे गुरु हमारे पूजनीय माता पिता हैं और उनके संस्कार ही हमारे जीवन में आत्मसात हो रहे हैं। और ये अगला एसएमएस हमें इन श्रोताओं ने भेजा है। लिखने वाले हैं जाखोद राजस्थान से, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। गुरु का स्थान सर्वोच्च है और उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और देखिए, ये बात तो हम बिल्कुल मानेंगे और कहेंगे भी, यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो सर्वप्रथम जिनकी वंदना की है, वो गुरुदेव की वंदना की है, उसके बाद ही सभी देवी देवताओं की वंदना की है। यानी सर्वप्रथम जो हमारे जीवन में सबसे मुख्य जो होते हैं, वो होते हैं गुरु। और ऐसे ही गुरु के संदर्भ में टैगोर गार्डन नई दिल्ली से लिख रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर जीवन को सही दिशा दिखाए। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि संस्कार, विवेक, आत्मविश्वास और जीवन जीने की सही कला भी सिखाता है। या एक पंक्ति में, गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमय बना देता है। मेरे जीवन में आनंद मूर्ति गुरु मां ने मुझे प्रेरित किया। चलिए, गुरुदेव की बातें हम करेंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। फिलहाल अभी आनंद लेते हैं संगीत का।

जी हाँ श्रोताओ, गुरुदेव के सम्मान में बहुत सारे SMS हम तक आ पहुंचे हैं। ये SMS आया है कमल बालूजा का, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही का, मजलू का टीला से। सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं और उसके बाद स्कूल में हमारे टीचर जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और जिनके कारण ही हमारा व्यक्तित्व फलता फूलता है। और ये SMS हमें लिखा है इन श्रोताओं ने, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से लिख रहे हैं। जीवन में गुरु की अच्छी बातें हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं, सही राह दिखाती हैं और इंसान को बेहतर बनाती हैं। गुरु की अनमोल सीख और बातें, सही और गलत की पहचान, गुरु हमें जीवन में उचित और अनुचित का भेद समझाते हैं ताकि हम ब्रह्म से बाहर आ सकें। बिल्कुल। और ये SMS आया है हमारे इन श्रोताओं का, हीरामणी वर्मा, दतरंगी, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ है, द्वितीय गुरु पिताजी हैं, तृतीय गुरु विद्यालय के गुरुजी हैं और चतुर्थ गुरु मेरे बड़े भैया जी हैं। माँ से करुणा, सहनशीलता की सीख मिली और पिताजी से धैर्य व साहस का शिक्षा मिला। विद्यालय में स्कूली शिक्षा का ज्ञान मिला और बड़े भैया जी से प्रेरित होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और आज भारतीय रेलवे में सेवारत हूं। बहुत सुंदर बात। और अगला ये जो SMS है ये हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा श्री, मत्ती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी लिखते हैं झालावाड़ा राजस्थान से। माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं, माता पिता ही हमारे परमेश्वर हैं। बिल्कुल। और माता पिता के संस्कार हमारे साथ हमेशा हैं। और ये SMS हमें भेजा है, लिखने वाले श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज।

ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज और बिट्टा बजाज। और आप सभी लिख रहे हैं कि गुरु परम ब्रह्म हैं, गुरु हमारे जीवन को दिशा और दशा प्रदान करते हैं और उनके ज्ञान उनके संस्कार से हमारा जीवन स्वयं फलता फूलता है। और ये हमारा SMS जिसे मैं शामिल कर रही हूँ, लिखने वाले श्रोता हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हैं, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्रु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से हैं, महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल लिखते हैं, सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंद की मास करूं गुरु गुण लिखा न जाए, मेरे गुरुओं ने सदैव प्यार और स्नेह दिया, सदैव प्रोत्साहित किया और मैं भी अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही करता हूं। जी बहुत अच्छी बात है। और ये SMS हमें भेजा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया ने जमशेदपुर से। लिखते हैं कि हमारे सिख समाज का हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानकर आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। और हमारा धर्म यही है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपने गुरु को नमन करते रहें, वंदन करते रहें। और गुड़िया बानो और अस्मानाज अंसारी, वली उल्ला अंसारी पुराना तालाब डुमराव से लिखते हैं कि गुरु की देन को भला हम कैसे भूल सकते हैं, वो खुद जलकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। और ये SMS हमें भेजा है खरसावां झारखंड से सुकरा नायक ने। अगर सबसे बड़ा कोई गुरु होता है तो वह माँ है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वो जितना सिखाती है कोई भी गुरु उतना नहीं सिखाता, इसलिए मेरी गुरु मेरी माँ है। और ये समय समय भेजा है फुटानी चौक नारायण स्टेट से ललन मिश्रा और नूतन मिश्रा ने। लिखते हैं कि वर्तमान समय में जब ज्ञान और तकनीक के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, तब भी गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत ही आवश्यक होता है। जानकारी को विवेक में बदलने, जीवन मूल्यों को समझने और सही दिशा चुनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन में ज्ञान और संस्कारों का प्रकाश फैलाता है। मुझे भी अपने छात्र जीवन में एक ऐसे ही गुरु का सानिध्य मिला जिन्होंने मेरी जिंदगी को सही दिशा प्रदान की। मैं जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूंगा। सचमुच गुरु ज्ञान का प्रदाता अथवा शिक्षक नहीं होते, वे जीवन को उच्च आदर्श को विवेक देने वाले प्रकाश पुंज होते हैं और अपने शिष्य के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करते हैं। बिल्कुल, एक मिट्टी होती है ना, जैसे मिट्टी को कुंभकार जब एक आकार प्रदान करते हैं कि उसका निर्माण उनके हाथों से होता है, बस ऐसे ही गुरु के संस्कार उनका ज्ञान हमारा जो व्यक्तित्व है उन पर निर्भर करता है। और ये SMS आया है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साईं गायकवाड़ का। लिखते हैं कि हम पहली कक्षा में पढ़ते थे, हमारे गुरु थे हमारे शिक्षक, अच्छी पढ़ाई करना लिखना ये सब हमारे गुरु ने सिखाया है, हम उनके आदेश से अच्छी पढ़ाई करते रहे। आज हमारे वो गुरु इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। बस यही बात है कि हमारे गुरु इस जीवन में हमारे साथ हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हैं तो उनके संस्कार उनकी शिक्षा उनका मार्गदर्शन जो राह उन्होंने हमें दिखाई उस पर हम सदैव चलते रहें। और देखिए ये हमारी झरना राजकोट गुजरात से लिखती हैं रश्मि, मेरी ही नाम राशि है, लिखती हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं भी अपने गुरुदेव से गुरु पूर्णिमा पर मैंने भी आशीर्वाद लिया और अब जल्द ही जगत के जो गुरु हैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत है, क्योंकि आपने लिखा है कि आपकी रेलवे की टिकट बुक हो गई है तो बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। और ये SMS हमें भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी लिख रहे

हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से। लिखते हैं कि माँ बाप के पास जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वह हैं हमारे गुरुजी, और हमें उनके कहे अनुसार ही चलना चाहिए। तो चलिए अभी और भी SMS हैं जिन्हें हमें शामिल करना है। अभी यहाँ एक और गीत।

ये SMS हमें भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। लिखते हैं, रश्मि बहन राम राम जी। हमारे गुरु तो हमारे माता पिता थे जिनके दिए संस्कारों पर हम आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए। और संस्कारों की बात हम कर रहे हैं, गुरुदेव की बात कर रहे हैं। ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, ऑरेंज सिटी नागपुर से हैं विठल यादव, अनुसुईया यादव, पवन राजे यादव। लिखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। मेरे गुरु का मुझे मार्गदर्शन मिला, मैंने अनुपालन भी किया और आज मुझे उनकी दी हुई शिक्षा से जिंदगी जीने का सरल रास्ता मिला। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, सेक्टर टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। लिखते हैं कि गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में खुशहाली है। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, बागरी मोहल्ला रटेलाई राजस्थान से हैं। लिखते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये SMS हमें भेजा है पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ज्ञान का वह दीप है जो हमेशा उज्ज्वलित रहता है। और ये SMS हमें भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने बुलंदशहर से। लिखते हैं, भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमारे माता पिता

और गुरु ही भगवान हैं, और यही विश्वास करने की बात है कि उनमें हमारी जो विश्वास अगर आप करते हैं तो गुरु वह हैं जो हमें परम ब्रह्म से मिलवाते हैं। और ये SMS हमें भेजा है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू ने। गुरु बिन ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्या बात है, गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी गुरु मेरी माँ है, आज वो हमारे पास नहीं है किंतु हर पल हर क्षण उनका मार्गदर्शन संस्कार आज भी हमारे साथ साथ रहता है। और ये SMS लिखने वाले श्रोता हैं ललितपुर से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और पूरा नामदेव परिवार। आपने लिखा है कि अगर पहले गुरु की बात करें तो माता पहली गुरु जो हमें इस मातृभूमि पर लाई, इसलिए भूमि को माता की उपाधि मिली। दूसरे गुरु पिता हैं जो उंगली पकड़कर चलना और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तीसरे गुरु शिक्षक हैं जो आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके जीवन को आगे का मार्ग दिखाते हैं। और अगर गुरु की बात करें तो रेडियो भी एक गुरु है जो मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद जानकारी देते हुए आगे बढ़ने की क्षमता देता है। क्या बात है। और ये SMS लिखा है कि गुरु अध्यात्म मार्ग को ले जाता है। जो शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं, लेकिन शिव नाराज हो गए तो गुरु बचा सकते हैं, गुरु नाराज हो गए तो शिव नहीं बचा सकते, इसलिए गुरु का स्थान ज्यादा है जी। ओहो क्या बात है। और यदि पूरी पृथ्वी को कागज बनाया जाए और सभी पेड़ों को कलम बनाया जाए तो सारे समुद्रों को स्याही बनाया जाए तो भी गुरु की महिमा लिखी जाए तो वह कम है जी। और सतगुरु का एक एक अक्षर मंत्र राज है। ये लिखने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा। और आप सभी के SMS हमने शामिल करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ SMS हमसे छूट गए हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लाल चंद्र वर्मा के स्वर में कुछ ब्रज लोक गीत।

मेरो मन घबरावे बिन देखे मेरो मन घबरावे बिन देखे मेरो चित

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत लालचंद वर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अभी सभी श्रोताओं से मिलते हैं छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
2: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
4: दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
4: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
5: पर बैंकिंग में नहीं।
6: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: Guys, let's do a quick call.
2: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
3: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी। तो फिकर नॉट।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: एक बार पुनः स्वागत है सभी श्रोताओं का FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सभी सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत लालचंद वर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लालचंद वर्मा के स्वर में ब्रजलोक गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये एक और लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजलोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आपने लालचंद्र वर्मा के सुर में कुछ ब्रजलोकगीत सुने। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पहलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्र

0: को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:15। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे ऊर्जा की बचत, छोटी आदत बड़ा योगदान। इसी के साथ चर्चा की जाएगी, विषय रहेगा परिवार पर नशे का प्रभाव, बातें फिल्मों की। ये कार्यक्रम भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 1:45 पर। हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम।

उमंग, जिसका समय रहेगा दिन में 2:30। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे मुंशी प्रेमचंद जयंती और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे दिनेश सिंह ब्रजवासी और नीरज चतुर्वेदी। संचालन करेंगी भावना शर्मा। समय याद रखिए संध्या 5:30।

हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना विशेष कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संध्या समय 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा के विषय रहेंगे धान की फसल में सामयिक कार्य एवं बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय, जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा।

संध्या वंदन कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 6:45 पर। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज नवकथा नयो जमानो आप सुनेंगे। कथाकार होंगे कमल भार्गव। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। रात्रि 8:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। एक ही फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30। नवरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अब बहने सुनेगी कार्यक्रम वनिता लोक।

मुस्कुराने की वजह मत ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपकी मुस्कान से दुनिया भी खिल जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आपकी सखी सहेली जया आर्य स्वागत करती हूँ अपनी सभी श्रोता सहेलियों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम वनिता लोक में। जी हाँ बहनों, आप सभी सुन रही हैं मुझे FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। बहनों, कार्यक्रम में हम हमेशा आपके लिए नए नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं और साथ ही गीत संगीत और मनोरंजन का तराना आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बने रहिए मेरे साथ, चलिए ले चलते हैं आपको अपनी चर्चा की ओर। श्रोताओं, आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे जीवन के ऐसे संसाधनों की जिनके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। वो अनमोल संसाधन है बिजली, पानी, ईंधन। इनके बिना आज के समय में जीवन जीना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा प्रतीत होता है। किंतु बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती जरूरत

दिक्कतों के कारण ऊर्जा की खपत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा की बचत करना हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी कोशिश से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि हर छोटी आदत मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। यदि हम कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखा और एसी बंद कर दें, दिन में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करें, अनावश्यक मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्विच ऑफ रखें, पानी का सही उपयोग करें तथा जहां संभव हो साइकिल या पैदल चलने जैसी आदतें अपनाएं, तो हम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल बिजली का बिल करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना भी है। आज बचाई गई ऊर्जा कल के सुरक्षित भविष्य की नींव है। आइए हम सभी आज ये संकल्प लें कि ऊर्जा का उपयोग सोच समझ कर करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, ऊर्जा बचाएं, पर्यावरण बचाएं, छोटी आदत अपनाएं, उज्जवल भविष्य बनाएं। और फिलहाल के लिए इस गीत का आनंद उठाएं।

श्रोताओं, परिवार प्रेम विश्वास और सहयोग की नींव पर खड़ा होता है, लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य नशे की लत का शिकार हो जाता है तो इसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। नशे के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होने लगता है, आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार बच्चों की पढ़ाई, उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होता है। वे भय, असुरक्षा और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे वे अपने परिवार से, जिम्मेदारियों और रिश्तों से दूर होने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि परिवार का सुख, शांति और खुशियां समाप्त होने लगती हैं। किंतु बहनों, हर समस्या का समाधान होता है, हर ताले की चाबी होती है। यदि परिवार के सदस्य प्रेम, धैर्य और सहयोग के साथ नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति का साथ दें और समय पर उचित चिकित्सकीय एवं परामर्श सहायता लें तो इस बुरी आदत से बाहर निकला जा सकता है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी नशा मुक्त बनाने में योगदान देंगे। याद रखिए, नशा जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि स्वस्थ जीवन परिवार में खुशियां और उजाला लाता है। नशा यदि करना ही है तो प्रेम से करिए, प्रेम अपने परिवार से, प्रेम अपने मित्रों से, अपने संबंध

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कहानी फिल्मों की अंतर्गत एक ऐसी भारतीय सिनेमा की, उस ऐतिहासिक फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फिल्म निर्माण का एक नया मानदंड स्थापित किया। इस फिल्म का नाम है मुगले आजम। साल 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म निर्देशक की वर्षों की मेहनत का परिणाम थी। इस फिल्म को बनने में लगभग 14 वर्ष का समय लगा। उस समय ये भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी मुगल सम्राट अकबर और उनके पुत्र शहजादा सलीम और दरबारी नर्तकी अनारकली के प्रेम पर आधारित है। जब सलीम और अनारकली एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो सम्राट अकबर इस रिश्ते का विरोध करते हैं। इसके बाद प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सत्ता के बीच एक भावनात्मक संघर्ष शुरू होता है।

इस फिल्म में अभिनय की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का दमदार किरदार निभाया, शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार ने, और जबकि हर दिलों की धड़कन मधुबाला ने अनारकली का ऐसा किरदार निभाया जिसे आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार अभिनय में गिना जाता है।

रूप से प्यार किया तो डरना क्या गीत को भव्य शीश महल में फिल्माया गया था, जो उस समय अपने भव्य सेट और तकनीक के कारण चर्चा का विषय बना।

इस फिल्म के गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे और तेरी महफिल में, जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं।

श्रोताओं, दिलचस्प बात यह है कि पूरी फिल्म श्वेत श्याम यानी कि पूरी मूवी जो थी वो ब्लैक एंड वाइट में बनाई गई थी, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या गीत रंगीन फिल्माया गया था। बाद में वर्ष 2004 में पूरी फिल्म को डिजिटल तकनीक के रंगीन रूप में दोबारा से रिलीज किया गया, जिसे हम सब ने कलर्ड मूवी के रूप में देखा। मुगले आजम को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। इसकी भव्यता, संवाद, संगीत, अभिनय और निर्देशन आज भी फिल्म निर्माण के छात्रों और सिनेमा प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, मुगले आजम केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रेम, त्याग और इतिहास को बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली एक कालजयी कृति है। यही कारण है कि रिलीज होने के 6 दशक से अधिक समय बाद भी ये फिल्म उतनी ही लोकप्रिय और सम्मानित है।

बेहद खूबसूरत गीत के साथ हम आज के कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहिए, जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहिए, गम चाहे जितने हों उन्हें भुलाते रहिए, दीपक की तरह खुद भी रोशन बनिए और दूसरों की जिंदगी भी जगमगाते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी की सखी सहेली जया आर्य आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगी। अगली बार आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ रही जया आर्या। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फीचर 3D इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हम से मिले तुम से। और इस गीत को अपने स्वर दिए हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने।

आशा भोसले और शब्बीर कुमार और साथियों को आपने सुना फिल्म हमसे मिले तुमसे, और इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है।

0: के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में

0: तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस ऑपर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 17 टीमें, SDRF की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र

0: में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे,

0: शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
0: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
0: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
0: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
0: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
0: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं, लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
0: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहां डाउनलोड कर सकते हैं।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुन

0: वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
4: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
5: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
4: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था,

0: ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936

0: को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
2: लयात्मक प्रस्तुति।
1: शीर्षक है
2: अभी न होगा मेरा अंत।
1: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

श्रोताओ, हम आपको स्मरण करा दें, संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जयंती और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे धान की फसल में सामयिक कार्य और बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजने वाले हैं और हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

FM 102.2 MHz पर ही ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं युवा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं दिनेश सिंह ब्रजवासी, नीरज चतुर्वेदी, संचालन भावना शर्मा का।
1: युवा साथियों को बता दें कि आज का दिन जो है शुक्रवार, और आज के दिन हम अपने युवा साथियों को सुनवाते हैं काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम, तो जिसे हमने आज आयोजित किया है और आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आज हमारे सामने जो हमारे युवा कवि साथी बैठे हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं
2: दिनेश सिंह ब्रजवासी।
1: आप?
3: नीरज चतुर्वेदी।
1: तो आप अपनी कविताओं के साथ तैयार होंगे। दिनेश सिंह ब्रजवासी को हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं।
2: मेरी कविता का शीर्षक है विजयादशमी। विजयादशमी मनाते मनाते हम बहुत ऊपर उठ गए हैं, हर तरफ रावण की चर्चा में श्री राम गुम हो गए हैं।
3: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: लंका के रावण का पुतला जलाकर खुशियां मनाते हैं हम, पर
3: बात है,
2: पर अपने अंतर मन में बैठे रावण को कहां जला पाते हैं।
3: वही वाह,
2: हम तो रावण का बस पुतला फूंकते हैं, हम तो रावण का बस पुतला फूंकते हैं।
3: बहुत सुंदर।
2: जबकि हमारे मन में छिपे असंख्य रावण, जबकि हमारे मन में छिपे असंख्य रावण हमें अपनों से ही तिल तिल तड़पा कर अपमान, बेचैनी और घुटन के जख्म देकर तालियां बजाते हैं।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बढ़िया।
2: असली विजयादशमी तो ये रावण मनाते हैं, असली विजयादशमी तो ये रावण मनाते हैं, राम को आजीवन वनवास दिलाते हैं।
3: क्या भाव है, बहुत सुंदर।
1: इन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी जो विजयदशमी पर थी। तो इसके बाद मैं समझती हूँ कि आमंत्रित करना चाहिए हमारे युवा साथी नीरज चतुर्वेदी जी को, तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
3: वह वाणी को प्रणाम करता हूँ, वे के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले कहता हूँ अपने विषय में, मैं अंधेरे में उजाले का इतिहास लिखता हूँ, मैं अंधेरे में उजाले का इतिहास लिखता हूँ, मैं अमीरों में गरीबों का उपहास लिखता हूँ, लिखता हूँ मैं आह दिल की किसी की चाह में, मैं धनुष्ता में मनुष्यता का आकाश लिखता हूँ, मैं धनुष्ता में मनुष्यता का आकाश लिखता हूँ, मैं अमीरों की महफिलों की बात लिखता हूँ, मैं अमीरों की महफिलों की बात लिखता हूँ, मैं गरीबों की ठिठुरती रात लिखता हूँ, मैं अश्क लिखता हूँ अनाथों के निरंतर, मैं अश्क लिखता हूँ अनाथों के निरंतर, शीत गर्मी और फिर बरसात लिखता हूँ, शीत गर्मी और फिर बरसात लिखता हूँ, दुनिया के दुख दर्द उठाने के लिए मैं हूँ।
2: क्या बात,
1: क्या बात।
3: दुनिया के दुख दर्द उठाने के लिए मैं हूँ, भटके हुआ को राह दिखाने के लिए मैं हूँ, कलम की बंदूक से मैं जंग लड़ता हूँ, कलम की बंदूक से मैं जंग लड़ता हूँ, खुद मिट के हिंदुस्तान बसाने के लिए मैं हूँ, खुद मिट के हिंदुस्तान बसाने के लिए मैं हूँ, खुद मिट के हिंदुस्तान में।
2: बहुत
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता आपने अभी पढ़ी। तो अब इसके बाद

0: आपकी बारी है, यानी दिनेश सिंह ब्रजवासी की। इनको हम आमंत्रित करते हैं मंच पे।
1: मेरी कविता का शीर्षक है समय। लोग कहते हैं हम नहीं बदले, समय बदल गया है। लोग कहते हैं हम नहीं बदले, समय बदल गया है। मैं कहता हूँ समय कहाँ बदला है, वह तो आज भी अपनी पुरानी गति और निश्चित अंतराल से घूम रहा है। वही सेकंड, मिनट, घंटों, दिनों, महीनों और बरसों में बंधा हुआ। वही दिन के बाद रात और फिर दिन अनवरत। हम ही में होड़ मची है समय से आगे निकलने की। इस दौड़ में हम बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं अपनी इंसानियत, संवेदना, सहयोग और विश्वास के भावों को। अपने फायदे और स्वार्थ के लिए हम बदल रहे हैं।
0: बहुत
1: भाई
0: कुल
1: वाह,
0: बहुत
1: भाई वाह,
0: कुल
1: बहुत सुंदर।
0: काफी भाव लिए थी इनकी कविता।
1: बदलते बदलते हम अपनी आत्मा तक के हंता होते जा रहे हैं।
2: बहुत सुंदर,
1: और अपने बचाव में कहते हैं समय के साथ बदलना जरूरी है।
2: वही वाह,
1: पर समय तो नहीं बदला तुम्हारी तरह। वह तो आज भी ऊंचे और बंद महलों की अपेक्षा खुले आंगन में उमड़ पड़ता है, पूरे
2: क्या बात,
1: उत्साह और सत्यनिष्ठा के साथ।
2: अरे
1: पूरे
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: उत्साह और
2: बहुत सुंदर,
1: सत्यनिष्ठा
2: वही
1: के
2: वाह,
1: साथ।
2: वही वाह, बहुत सुंदर।
0: इनकी कविता सुन के बिल्कुल आनंद आ गया। क्यों, क्या ख्याल है नीरज जी आपका? अब आपकी
2: बहुत
0: ही
2: सुंदर
0: बारी है।
2: कविता। मेरी रचना का शीर्षक है वंदे मातरम। आत्मा का वंदन है वंदे मातरम, आत्मा का वंदन है वंदे मातरम, ललाट का चंदन है वंदे मातरम।
0: क्या बात,
2: वंदे मातरम सजगता की प्रेरणा है, वंदे मातरम सजगता की प्रेरणा है, माँ का अभिनंदन है वंदे मातरम।
0: वाह वाह वाह, क्या
2: वाह,
0: बात
1: क्या बात कही है
2: माँ का अभिनंदन है
1: नीरज
2: वंदे
1: जी ने।
2: मातरम। क्रांति का उद्घोष है वंदे मातरम, क्रांति का उद्घोष है वंदे मातरम, वीरता का जोश है वंदे मातरम। जिस शब्द पर करोड़ों बलिदान हो गए, जिस शब्द पर करोड़ों बलिदान हो गए, वो विजय का जय घोष है वंदे मातरम, वो
0: क्या
2: विजय
0: क्या
2: का जय
1: बात है,
2: घोष है वंदे मातरम।
0: वाह,
2: स्वतंत्रता का सारथी है वंदे मातरम, स्वतंत्रता का सारथी है वंदे मातरम, माँ भारती की आरती है वंदे मातरम। जिन रगों में आज भी पवित्र खून है, जिन रगों में आज भी पवित्र खून है, वो हर समय पुकारती हैं वंदे मातरम, वो हर समय पुकारती हैं वंदे मातरम, वो हर समय पुकारती हैं वंदे मातरम।
0: वाह वाह नीरज जी,
2: बहुत सुंदर,
0: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता अभी आपने पढ़ी।
1: जोश
0: वंदे
1: भर के।
0: मातरम इनका शीर्षक था और बहुत ही प्रेरणात्मक कविता थी इनकी ये। क्या ख्याल है दिनेश जी, अब आपकी बारी है, आप तैयार हैं?
1: हाँ, नीरज जी ने बहुत ही सुंदर जोशपूर्ण कविता सुनाई वंदे मातरम का। अभी जन्म 100 साल भी पूरे हुए हैं गायन को, और उस अवसर पर बड़ा सटीक था इनका
0: बिल्कुल,
1: शब्दों का चयन। तो मेरी कविता है दीपदान। सतयुग में राम आए अयोध्या में रावण को मारकर, तो उस समय के लोगों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए। और आज कलयुग में जो परिवर्तन हुआ है, दिए बढ़कर चिराग हो गए हैं, लेकिन लोगों
2: बहुत
1: की जो
2: सुंदर
1: मानसिकता है उस किस तरह से बदली है, उसे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, तो
2: जी,
1: वही प्रस्तुत करता हूँ आप सभी श्रोताओं के सामने।
2: जी
1: कविता का
2: बिल्कुल,
1: शीर्षक है दीपदान।
2: स्वागत है आपका।
1: कभी जले थे अयोध्या में घी के दिए,
2: वही वाह, क्या
1: कभी
2: बात,
1: जले थे अयोध्या
2: बहुत
1: में घी
2: सुंदर,
1: के दिए राम के आने पर,
2: बहुत सुंदर,
1: आज जलते हैं चिराग राम के जाने पर,
2: राम के जाने पर, वही वाह,
1: हमारे
2: बहुत सुंदर वाक्य,
1: आसपास, हमारे
2: बहुत
1: आसपास।
2: सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: बहुत।
2: सुंदर।
0: इसके बाद आपकी ही बारी है नीरज जी, तैयार रहिए। आप अपनी कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं हमारे युवा साथियों को तो बताइए।
2: मैं अपने युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं, उन्हें बता देना चाहता हूं कि आज का समय मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ने का नहीं है दोस्तों, आज हमें आतंकवाद से लड़ना है। मैं कहता हूं कि मंदिर वो मस्जिद पे लड़े ना ना ठीक अब, कि मंदिर वो मस्जिद पे लड़े ना ना ठीक अब, भूले इतिहास की ना पुनः दोहराइए, कि आतंकवाद उग्रवाद देश की समस्या है, आतंकवाद उग्रवाद देश की समस्या है, एक साथ बैठ कर इन्हें सुलझाइए,
0: बिल्कुल,
2: कि गोरियों के बालों में और नेताओं की चालों में, कि गोरियों के बालों में और नेताओं की चालों में, व्यर्थ के बवालों में उलझ मत जाइए,
1: क्या
2: कि
1: कहूँ।
2: बाबरी या राम जी के मंदिर की बात छोड़, कि बाबरी या राम जी के मंदिर की बात छोड़, घर घर भारती का मंदिर बनाइए,
0: क्या खूब,
2: घर
0: बहुत
2: घर
0: सुंदर,
2: भारती का मंदिर बनाइए, ये मिटा भेदभाव सब जाति संप्रदाय के, और भी करीब एक दूसरे के आइए, कि संघर्ष जो करना है जुल्म के खिलाफ करो, कि संघर्ष जो करना है जुल्म के खिलाफ करो, दीन दुखियों को आप गले
0: गले
2: से
0: से लगाइए,
2: लगाइए,
0: बहुत
2: कि
0: बढ़िया,
2: रो
0: क्या
2: रहे
0: बात है,
2: अनेक बाल बन के अनाथ आज समाज से हुए हैं दूर, पास ले आइए, कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई छोड़, कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई

0: हो सके तो आप भारतीय कहलाइए, हो
1: बहुत
0: सके तो
1: सुंदर
0: आप
1: भावना।
0: भारतीय कहलाइए, हो सके तो आप भारतीय
1: नीरज
0: कहलाइए।
1: जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, और हम आमंत्रित करते हैं दिनेश सिंह ब्रजवासी जी को।
0: मेरी कविता का शीर्षक है उत्कर्ष। हर
1: बहुत
0: तरफ बढ़ रहा भ्रष्टाचार का शोर है, हर तरफ अन्याय अत्याचार का जोर है, कानून को लगता है जैसे हर आम आदमी चोर है।
1: वाह,
0: भाई
1: क्या
0: वाह,
1: बात,
0: बहुत सुंदर
1: बहुत
0: बात
1: बढ़िया,
0: है,
1: बहुत
0: बहुत
1: बढ़िया।
0: सुंदर बात है,
1: तालियां
0: बहुत अच्छा,
1: कम मत कीजिए,
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा,
1: तालियां बजाते
0: बहुत
1: रहिए,
0: अच्छा,
1: बहुत
0: बहुत
1: बढ़िया।
0: भाई वाह, क्या बात है। देख कर लगता नहीं क्या यही अपना देश है, जैसा स्वार्थ वैसा सबका भेष है।
1: बहुत
0: वाह,
1: सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर।
1: बढ़िया।
0: बस कहीं थोड़ी संवेदना शेष है, तभी तो एक गरीब का प्रिंस देश का प्रिंस बन गया। यहां भावनाओं का सौदा और मौत को लायक दिखाना भी TRP बढ़ाने को जरूरी है।
1: क्या बात है, बहुत
0: कुछ
1: सुंदर।
0: कुछ बहुत जरूरी मुद्दे बहुत गैर जरूरी बन गए हैं। यहाँ देह दिखाकर बल्ला चलाकर नाम और दाम सहज ही कमा लेते हैं लोग।
1: वही वाह, वही वाह, वही वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: यहाँ देह
1: बढ़िया,
0: तोड़कर पसीना बहाकर भूखे पेट आत्महत्या भी करते हैं लोग।
1: सच्चाई है,
0: अच्छी बात है।
1: सच्चाई है, बिल्कुल
0: मानते जिन्हें हम
1: सत्य।
0: भारत की जान है, वे ही हुए सबसे ज्यादा बेजान हैं।
1: क्या बात है,
0: भूख गरीबी भुखमरी बन गए जिनकी पहचान है, फिर भी मेरा देश महान है।
1: वही
0: फिर भी
1: वही महान है, वही
0: मेरा
1: वाह,
0: देश
1: वही वाह,
0: महान
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर, बढ़िया,
0: बहुत अच्छा
1: वही,
0: चित्र खींचा है आपने।
1: जो
0: देश
1: बहुत
0: की जान है वही बन गए बेजान हैं,
1: सच्चाई की,
0: बस वही बन
1: बिल्कुल
0: गए बेजान हैं।
1: एक एक शब्द में सच्चाई इनकी कविता कह रही है। तो इसके बाद आपकी बारी है, आपको पता ही है, और आप तैयार हैं नीरज जी?
0: मैं अपने एहसासों की बात करता हूं। हमें रातों के सपनों में सनम बस तुम नजर आए,
1: क्या बात,
0: तुम्हारे साथ ही मैंने प्रणय के गीत कुछ गाए। तुम्हारा प्यार पाने को जमाने को भुला डाला, तुम्हारा प्यार पाने को जमाने को
1: भुला
0: भुला
1: डाला,
0: डाला, तुम्हारे साथ देखा तो जमाने ने सितम ढाए।
1: क्या बात है,
0: तुम्हारे
1: रोमांटिक हो गए नीरज जी
0: साथ
1: कुछ।
0: देखा तो जमाने ने सितम ढाए, कि
1: वही,
0: हम तो तेरे आशिक हैं नहीं चिंता जमाने की,
1: बहुत खूब,
0: कि हमें तो प्यार की चाहत नहीं जरूरत जमाने
1: क्या
0: की,
1: बात,
0: तेरी जुल्फों की खुशबू ही सनम अपना है
1: वाह वाह
0: अफसाना।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह, सिंगार
0: तेरी
1: रस में डूब गए।
0: जुल्फों की खुशबू ही सनम अपना है अफसाना, चाहे बस तेरी खुशियां, नहीं
1: परवाह
0: परवाह
1: जमाने की,
0: जमाने
1: क्या
0: की,
1: बात है नीरज
0: नहीं
1: जी,
0: परवाह
1: बहुत
0: जमाने
1: खूब,
0: की। कटीली नैन तेरे अव
1: क्या
0: हमें
1: कल्पना है।
0: भाते हैं बस साजन।

0: मानना होगा,
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: तेरी डोली मेरा सपना, तुम्हें ये मानना होगा। तुम्हें देखे अगर हंसते, हम भी तो चहकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात
0: और
1: है,
0: मैं
1: क्या
0: देखे
1: बात
0: अगर
1: है।
0: हंसते, हम भी तो चहकते हैं। और अंतिम कह रहा हूं, मगर अब छो

0: अंदाज अच्छा है हमको यूं सताने का, तेरा अंदाज अच्छा है, मगर गीतों या गजलों में हमें ही पाओगे प्रियवर,
1: क्या
0: मगर
1: बात,
0: गीतों या
1: बहुत खूब,
0: गजलों में हमें ही
1: बहुत
0: पाओगे
1: बढ़िया नीरज
0: प्रियवर,
1: जी,
0: मगर गीतों या गजलों में हमें ही पाओगे प्रियवर।
1: बहुत
0: बहुत सुंदर
1: अच्छी इन
0: कल्पना।
1: कविता इन्होंने पढ़ी। इनका शीर्षक था साथी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और इसके बाद हम फिर से आमंत्रित कर रहे हैं दिनेश सिंह ब्रजवासी जी को।
2: अभी आपने नीरज चतुर्वेदी जी की बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अपनी प्रेमिका के लिए की गई कल्पना सुनी। इसके बाद एक और दूसरा रूप में दिखा रहा हूँ अपनी कविता में, जिसका शीर्षक है कैसा खेल है ये जिंदगी।
0: वाह,
1: शीर्षक ही दमदार है।
2: कहीं धूप है कहीं

0: कहीं छांव है, कहीं रात है, कहीं दोपहर, कहीं अमावस, कहीं पूर्णिमा, कहीं कैद मुट्ठी में सोना चांदी हीरा मोती, कहीं दबी है मुट्ठी में रेगिस्तानों की तपती रेती,
1: भाई वाह, क्या बात
2: क्या
1: है।
2: बात।
0: कहीं बहार, कहीं पतझड़ है, कहीं जिंदगी भी भूली बिसरी, कहीं मौत भी लोकप्रिय है,
1: बहुत
0: कहीं
1: सुंदर,
0: मौत भी
1: बहुत
0: लोकप्रिय
1: सुंदर।
0: है, कहीं बच्चों के दिमाग लड़ाने को है ज्ञान पहेली,
1: भाई
0: कहीं बच्चों के दिमाग लड़ाने को है ज्ञान पहेली, कहीं बच्चों के लिए भूख बनी है अजब पहेली,
1: क्या बात है,
0: कहीं
1: बहुत
0: बच्चों के
1: सुंदर।
0: लिए भूख बनी है अजब पहेली, आखिर कैसा खेल है ये जिंदगी, आखिर कैसा खेल है ये जिंदगी।
1: वाह
0: वाह,
1: एकदम
0: बिल्कुल
1: रोधात्मक विचारों का समन्वय किया आपकी कविता ने। दिनेश सिंह जी के बाद हम फिर से आमंत्रित कर रहे हैं नीरज चतुर्वेदी जी को। तो नीरज जी, आप अपनी अगली कविता के साथ तैयार हैं?
3: कविता की बात कही है तो कविता के विषय में ही बताना चाहूंगा। कविता क्या है? कविता गीत गजल है, कविता गीत गजल है, कभी खुशी है कभी सजल है, कविता गीत गजल है। सुख दुख की परछाई हो तो, पीड़ा अतिशय छाई हो तो, यदि विपत्ति आई हो तो, कविता सुखद पहल है,
2: क्या बात,
3: बहुत सुंदर,
0: कविता
3: क्या गीत गजल है,
2: बहुत
3: कविता
0: खूब
3: गीत गजल
0: कल्पना की
3: है।
0: है।
3: कभी चिंता में खोया हो तो, अंतर मानस रोया हो तो, कभी चिंता में खोया हो तो, अंतर मानस रोया हो तो, भाव हृदय का सोया हो तो, कविता सबका हल है, कविता
2: क्या
3: गीत
2: बात,
3: गजल है, कविता गीत गजल है। जीवन चाहे उपन्यास हो, जीवन उपन्यास से कम नहीं होता, जीवन चाहे उपन्यास हो, अक्षय विस्तृत शिलान्यास हो, जीवन चाहे उपन्यास हो, अक्षय विस्तृत शिलान्यास हो, संस्मरण की तीव्र प्यास हो, कविता बहुत सरल है, कविता गीत गजल है, कविता गीत गजल है। रेखा चित्र ही सुंदरतम हो, रेखा चित्र ही सुंदरतम हो, चाहे कहानी का ही बन हो, यदि एकांकी कवि जीवन हो, कविता प्रीत महल है, कविता प्रीत महल है, कविता गीत गजल है, कविता गीत गजल
2: बहुत
3: है,
2: बढ़िया,
3: कभी
2: बहुत
3: खुशी
2: बढ़िया,
3: है कभी सजल है, कविता गीत गजल
2: बहुत
3: है।
2: खूब नीरज जी, बहुत ही बढ़िया कविता अभी आपने पढ़ी। और इसके बाद आखिरी दौर में हम फिर से आमंत्रित करेंगे दिनेश सिंह जी को।
0: अभी आपने नीरज चतुर्वेदी जी की सुनी कविता एक गज़ल है। इसके बाद मैं अपनी कुछ छोटी छोटी कविताएं आपको दो तीन और सुना रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है लड़कपन। आज हमारे समाज में कन्या को एक बोझ माना जाता है और उसे जन्म लेने से पहले ही माँ की कोख में ही मानने का षड्यंत्र रचा जाता है।
2: जी
0: कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर मेरी ये कविता है छोटी सी।
2: बिल्कुल,
0: मैं लड़की हूँ, सृष्टि की जननी हूँ, मैं लड़की हूँ, सृष्टि की जननी हूँ, पर मुझे ही जन्म लेने का अधिकार नहीं,
2: वाह वाह वाह,
0: पर
1: क्या
0: मुझे ही
3: बात,
0: जन्म लेने
3: बहुत
0: का
3: सुंदर
0: अधिकार
3: बात
0: नहीं।
3: कही है, बहुत
2: बहुत ही
3: गजब
2: अच्छी
3: है,
2: बात कही है इन्होंने।
3: बहुत अच्छी बात है,
0: दूसरी है महामारी। हर तरफ बढ़ रही है अन्याय अत्याचार की महामारी, हर तरफ बढ़ रही है अन्याय अत्याचार की महामारी, लुट रही है बेचारी नारी,
3: भाई वाह,
2: वाह
3: बहुत
0: वाह, लुट
3: सुंदर,
0: रही
3: बहुत
0: है
3: सुंदर,
0: बेचारी नारी।
3: बहुत सुंदर।
2: नारी
3: एक
2: के
3: बात
2: विषय
3: फिर
2: में
3: द्रौपदी का
2: बिल्कुल,
3: किरदार में है,
2: बिल्कुल नारी के
3: बहुत
2: विषय में
0: सुंदर।
2: उन्होंने बिल्कुल सही कथन कहा है।
0: एक और है जिंदगी के बारे में।
2: बिल्कुल
0: हाँ,
2: स्वागत है आपका।
0: जिंदगी एक जुआ, जिंदगी एक जुआ है, फिर भी लोग करते हैं दूसरों के लिए बद्दुआ। जिंदगी एक
3: भाई
0: जुआ
3: वाह,
0: है, फिर भी लोग करते हैं दूसरों के लिए बद्दुआ।
3: बहुत सुंदर,
2: जो भी कुछ आपने आज प्रस्तुति दी बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया थी। और क्योंकि हमें समय की सीमा ने बांध रखा है और हमें आपसे विदा भी लेनी पड़ेगी, हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। और मित्रों, इसी के बाद हम आपसे भी इजाजत चाहते हैं।
4: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे दिनेश चंद ब्रजवासी, नीरज चतुर्वेदी, संचालन कर रही थी भावना शर्मा।
5: प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुन एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलिडे को स्मूथ स्टार्ट।
6: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: करना है पर छुट्टियां हैं कम. टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलिडे को स्मूथ स्टार्ट.
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: दोस्तों, आज है मुंशी प्रेमचंद जयंती. कलम का सच्चा सिपाही वही होता है जो समाज को आईना दिखाए. ऐसे महान साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद, जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाई जाती है. मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही वाराणसी में हुआ था. उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत नबाब राय नाम से की, बाद में वे प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए. उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को नई दिशा दी. उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि समाज की सच्चाई, गरीबों का संघर्ष, किसानों की समस्याएं, स्त्री सम्मान, शिक्षा, सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं को जीवंत चित्रण करती थी. उनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गबन, निर्मला कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा और दो बैलों की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इन रचनाओं में उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम और मानवता से ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य निहित हैं. मुंशी प्रेमचंद ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और सही दिशा दिखाना भी है. जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, प्रेमचंद के विचार हमें सत्य, करुणा, समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाते हैं. उन्होंने कहानियाँ जो लिखी उसमें हमें दूसरों के दुख को समझने, न्याय का साथ देने और एक संवेदनशील नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है. हम ईमानदारी, मानवता और सामाजिक सद्भावों के मूल्यों को यदि अपने जीवन में अपनाएंगे और पुस्तकों से मित्रता कर ज्ञान एवं संस्कार दोनों प्राप्त करेंगे. और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वालों, महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बिना बड़ी गारंटी के व्यवसाय शुरू करने से उसे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है. इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं. शिशु ऋण में 50,000 तक का ऋण, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का. दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना और छोटे व्यवसायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों ने अपने व्यवसाय की शुरुआत की है और अपने जीवन के स्तर में भी सुधार किया है. साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. और आइए कार्यक्रम में अब चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत.

तो दोस्तों, अब चलते चलते कार्यक्रम में बस यही कहना चाहेंगे, सफलता किस्मत से नहीं, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से मिलती है। चुनौतियाँ रास्ता रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती हैं। तो हर दिन कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी तक युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: वो डिपेंडेंस कम हुई है, जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में

0: जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे धान की फसल में सामयिक कार्य और बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा। साथ ही साथ सुनिएगा एक वार्ता, विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा।

संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं ब्रज नव कथा नयो जमानो। कथाकार होंगे कमल भार्गव।

श्याम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति परक रचनाएं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से प्रसारित होगा रात्रि 8:30 पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा गजलें। कलाकार होंगे श्री गोपाल अग्रवाल और सुरेश चंद्र वर्मा।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन।

रात्रि 11 बजे सुनेगा हिंदी समाचार, 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन।

अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप यादव।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, बरसात को सीजन है, लेकिन यह बार कमजोर मानसून ने हमारे किसान भैया को बड़ी समस्या पैदा करी है। चर्चा कर रहे हैं धान की फसल में सामयिक कार्य विषय पर। किसान भैया, बहुत से इलाके में हम देख रहे हैं जहाँ किसान भैया धान बरसात के सहारे अपने समरसेबल से ट्यूबवेल वाले इलाके में, यानी कि जहाँ नहरी जो व्यवस्था है, सिंचाई के साधन नहर से ना आए, बिन इलाके में वो किसान भैया ने धान की फसल लगाए वो शुरू कर दी, और यह बार मानसून कमज़ोर है और कमज़ोर मानसून में बार बार पानी लगावो और डीजल खर्च करवो बहुत बड़ी समस्या को कारण बन चुको है। कई इलाके में किसान भैया ने धान की फसल जो तो हो गई है, और वो दोबारा दूसरी फसल कम पानी वाली फसल उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जिन किसान भैया ने धान की फसल लगा रखी है वहाँ में सामयिक जो कार्य हैं, किसान भैया गर्मी के चलते या मौसम जो है थोड़ा सा गर्म रहने के चलते या बार धान में पत्ती लपेटक जैसे समस्या बहुत आई है। तो सबसे पहले हम बात करें पत्ती लपेटक की, तो पत्ती लपेटक को बचावे के काजे हमारे किसान भैया कोई भी हल्की फुल्की जो डस्ट है, जैसे मेलाथियान तो बंद है गई, जो जहरीली डस्ट आवे, धूल जाकू कहें, सफ़ेद पाउडर, इनसे भी वाकू मार सकें। और वासे भी आसान तरीका है, खेत में एक बांस में या थोड़ी सी वजनदार लकड़ियाँ में दोनों तरफ रस्सी बांध के बाकू घुमा दे में। लेकिन यह के दो फायदा होंगे, एक तो आपको जो पत्ती लपेटक है वो जैसे ही आपको धान के पौधा पूरे खेत में वो लकड़ियाँ आपको घुमानी है, 6-7 फीट की चौड़ाई को कोई डंडा लेके आगे दोनों तरफ रस्सी बांध दें और रस्सी को पकड़ के पूरे खेत में घुमा दें, यानी कि पौधन के ऊपर है के आपकी जो लकड़ियाँ है या बांस है वो फिर जाए। बस हो गई ये कि आपके खेत में जो पानी है वह पानी में आपके पत्ता धुल जाएंगे और बाकी संग ही पौधा को एक झटका लगेगा, क्योंकि हर जीव में जीवन बचावे की प्रवृत्ति हो, जैसे ही आपको पौधा थोड़ा सा मुड़ेगा और पानी में डूबेगा और डूबने के बाद फिर सीधा खड़ा होगा, तो वो जो झटका है या झटका लगने के बाद में, आजकल यूट्यूब पर भी हमारे किसान भैया देख रहे होंगे कि पौधा में टिलरिंग यानी कल्ला बनवे की जो अवस्था है, कल्ला बनवे की जो रफ्तार है वो तेज़ होगी। तो सबसे पहले जो पत्ती लपेटक के रोग के नियंत्रण के काजे बजाय दवाई पे पैसा खर्च करवे, क्योंकि यावार किसान भैया की जो पैसा है यानी धान की जो लागत है वह में बहुत इजाफा भयो है, चाहे रोग की बात करें हम, चाहे जैसे सीधी बुवाई किसान भैया ने करी, बहुत से किसान भैया की फसल बर्बाद भई, कहीं गहरी बुवाई है गई, खरपतवार बहुत ज़्यादा है गई, बार बार हल्की फुल्की बरसात होती रही, बस खरपतवार ने बहुत परेशानी पैदा करी है। तो इन सब समस्या में और खर्चा ज़्यादा हैवे के चलते अगर आपको राहत लेनी है तो ये पत्ती लपेटक जैसी सामान्य समस्या के काजे आप अपने खेत में बांस में या लकड़ी में रस्सी बांध के पूरे खेत में घुमा दे में, जैसे कि आपकी ये एक समस्या को समाधान है जाओ। भैया देखो, कल्ला बनवे की जो अवस्था है, अगर आपने 1 सवा महीना की पौध लगाई है तो कल्ला बनवे की अवस्था 20-25 दिन को समय ही आपकी जो फसल है वह शेष है। तो यह समय पर आपको ध्यान ये रखना है कि किसान भैया अंधाधुंध यूरिया को प्रयोग ज़्यादा करें, तो यूरिया को प्रयोग तो करना है लेकिन बाकी जो मात्रा है वाकू कम करके, जैसे आप 15 दिन में यूरिया डाल रहे हो या 10 दिन में डाल रहे हो तो बाकू थोड़ा सा कम कर लो, 1 हफ्ता पर डालो, बजाय 25 किलो 50 किलो के बीघे के 20 किलो को बीघो डालो, लेकिन बाकू जो अंतर है वो समय थोड़ा सा कम करके 1-1 हफ्ता के अंतर पर 3 बार में डालो, उतनी ही मात्रा को 3 बार में डालो। और पोषक तत्व प्रबंधन बेहद ज़रूरी है सामयिक कार्यान्वयन में, तो हमारे ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, आपने मिट्टी की अगर जांच कराई है तो आपको पता होगा, और नहीं कराई है तो आजकल बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिक्सचर आमे हैं, आप जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीज़ों की जो पूर्ति अपनी फसल में करनी है तो उन मिक्सचरन को प्रयोग यूरिया के संग में ज़रूर करें, और या कि कम से कम 2-2.5 किलो पक्के बीघा के हिसाब से या 5 किलो एकड़ के हिसाब से या कुछ जरूर डालें, जैसे कि आपके पौधा को ताकत मिले और रोगन से लड़े।

की बखूब ताकत मिले। तो ये रही पोषक तत्व तो प्रबंधन की बात। अब कीट नियंत्रण में पत्ती लपेटक की ही समस्या है, थोड़ा सा झुंडो बनवो शुरू है जाओ, बाकी बाद में धान की सुंडी यानी स्टेम बोरर जैसे जो कीट हैं उनके प्रभाव पर लक्षित होंगे। और किसान भैया फिर कीटन से बचावे के काजे तो जाने ही है, कौन कौन के कीटनाशक उनको प्रयोग करना है, लेकिन बिना कीड़ा आए अनावश्यक रूप से कीटनाशक उनको प्रयोग हमारे किसान भैया को नहीं करना चाहिए। और धान के खेतन में देखो, जहाँ पानी एक बार भी अगर किसान भैया ने नहीं सुखाया हो तो कम से कम एक बार अपने खेत की मिट्टी को थोड़ा सा टाइट ज़रूर होने दें। ज़्यादातर इलाके जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति है वहाँ किसान भैया ने एक बार अपनी जो खेत है जमीन है उनको सूखन ना दिए, या से भी जो हमारी टिलरिंग है वो प्रभावित हो। और खेत में पानी की बहुत ज़्यादा 6 इंची 5 इंची पानी खड़ो खड़ो रखने की आवश्यकता ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप खड़ो रखोगे आप जो भी पोषक तत्व तो डाल रहे हो, चाहे वो यूरिया है या फास्फोरस है पोटास है, कोई भी आप पोषक तत्व तो डालोगे बाकू पौधा बहुत कम मात्रा में ले पावेगो। तो ज़रूरत यह बात की है कि पानी खेत में रहे लेकिन उतनो रहे जामे के बाकू भरपूर पोषक तत्व तो मिल सके। यह चीज़ को भी हमें ध्यान रखना हो, केवल अंधाधुंध पानी खड़े करवे से भी कोई फ़ायदा ना है। तो ये दूसरी बात रही पानी की, पोषक तत्व प्रबंधन की और कीट नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण को किसान भैया हमारे लगे ही भय हैं। देखो अब अच्छो जी रहे कि हम बजाय कि ये जो दवाई है खरपतवार नियंत्रक इनके बजाय अगर खरपतवार कम है तो हम मैनुअल जो श्रमिक हैं मजदूर हैं उनको अपने खेत में घुमा में, और जहाँ चकत्ता आपके हैं खरपतवार के उनको उखाड़ उखाड़ के आप अपनी मेड़न पे या ऐसी जगह पे डालें जैसे कि वो दोबारा आपकी फसल तक न पहुँचे और नुकसान न पहुँचावे। क्योंकि जब आदमी नंगे पैरों से खेत में घूमे तो जड़ जो है वो हलें और पौधन में जो कल्ला बनने की स्थिति है वो रफ्तार है वो तेज़ हो, तो आपको ये सब छोटी छोटी जो चीज़ हैं जो सामने कार्य हैं उनको ध्यान रखना है। और जितने भी पोषक तत्व हैं उनको प्रबंधन ठीक सो करना है तो निश्चित रूप से आपको फसल अच्छी मिलेगी। भैया देखो चर्चा, क्योंकि बरसात का सीजन है, बरसात कम हो या ज़्यादा हो दोनों ही स्थिति में बरसात में हवा में नमी बनी रहे और हवा में नमी के संग ही तमाम तरह के जीवाणु कीटाणु रोगाणु ये पनपे हैं, और यह समय मच्छरन को डांसन को प्रयोग प्रकोप बहुतायत में है। और हमारे जो पशु हैं हम अपने काजे तो पंखा कूलर लगा लें, बहुत से किसान भैया पंखा कूलर भी लगावें और मच्छरदानी भी लगावें, बड़ी बड़ी मच्छरदानी लोगों ने बनवा रखी है कई को हज़ार की, और अपने पशुओं को भी वही हिसाब से ध्यान रखें जैसे खुद को ध्यान रखें। तो लेकिन जो भैया साधन ही ने जो 2000 4000 मच्छरदानी पर खर्च नहीं कर सकें या ऐसी जगह पर पशुओं को बांध रहे हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था ना है पंखा की व्यवस्था ना है वहाँ पशुओं को रात में आराम कर वो भी मुश्किल है जाए, तो ऐसे में बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो यह समय खुरपका मुंहपका को टीकाकरण को अभियान किसान भैया जैसे शुरू है व्यवहार हो तो अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय या एलियो सेंटर है वहाँ संपर्क करके आप अपने पशुओं को टीकाकरण घुरका खुरपका मुंहपका जाके भी टीका लग सकें जाके भी वैक्सीन उपलब्ध हो वाके टीका जरूर लगवा में। और पशुओं को जहाँ बांध रहे हैं वहाँ यह बात को ध्यान रखें कि पशुओं को जो भी ये कीट पतंगा है वो कम से कम नुकसान पहुँचावे। अगर कोई साधन आपके पास ना है तो थोड़ा सो कंडन की आग जला के वहाँ पे नीम की पत्ती डाल दें जैसे कि धुआं होता रहे, और कड़वे धुआं की वजह से जो कीट हैं वो हमारे पशुओं को कम परेशान करें। बरसात के सीजन में खुले आसमान के नीचे पशुओं को बिल्कुल ना बांधें, क्योंकि कब बारिश आ जाए और रात में बारिश विशेषकर गौधन जो है गौवंश पानी से बचे है, भैंस की तो एक बार को अलग बात है कि पानी को भी झेल जाए। तो पशु उनको जहाँ बांध रहे हैं वहाँ यह चीज़ को भी ध्यान रखें कि बरसात में ज़्यादा पशु भीग ना पाए, गौवंशीय पशु तो कम से कम बार बार न भीगें। और छोटे जो बच्चा हैं लवारे हैं उनकी सेहत अगर दुरुस्त रखनी है तो चाहे टीन के नीचे ही रखें या ऐसी सघन जगह पर जहाँ बारिश से वो सीधे सीधे प्रभावित ना हो ऐसी जगह पे उनको बांधना चाहिए। पोषण की हम बात करें तो देखो खान पान में हमारी प्रोटीन की जो मात्रा है वह चाहे वो दालन से मिले या खल से मिले, पशुओं को या समय हरे चारे की जहाँ धान की खेती है उन इलाके में तो हरे चारे की भी कमी है जाए तो हरों चारों बरसात के सीजन में ज़रूरी है। लेकिन जो वैसी घास है जंगली घास है वह कुछ चराते समय यह चीज़ को ध्यान रखें कि बहुत सारे जो पेट के जो कृमि पैदा करने वाले तत्व हैं वो जंगली घास से या गंदे पानी के माध्यम से हमारे पशुओं के पेट में पहुंच सके और बजाय हरे चारे से लाभ के उनको नुकसान भी हो सके। तो पेट के कीड़न की दवा अगर आपने ना दिए तो पेट के कीड़न की दवा भी पशुओं को कम से

कम एक गोली 3 ग्राम की बड़े पशु को एल्बेंडाजोल की बजाय फेलबेंडाजोल ज़्यादा अच्छी है। तो ये पेट के कृमिनाशक दवा हूँ, अगर आपने ना दी तो बाकू पशु उनको दे देना चाहिए, जैसे कि पेट के जितने भी कृमि हैं वो समाप्त हो जाए। तो किसान भैया, ये रही बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा विषय पर चर्चा, और कार्यक्रम में आपको सुनवा में अब एक प्यारा सा लोकगीत।

0: कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया सदा उल्टी बहे प्यार। स्वामी राम स्वरूप शर्मा के स्वर में आप सब ने लिए हो या सुरीले गीत को आनंद। किशन भैया प्रेस ग्रामीण कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, विषय है मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा।
1: आज हम आपसे बात करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें पोषक तत्वों की पूरी आवश्यकता होती है जो कि मिट्टी से मिलते हैं। अभी समय के साथ साथ ये देखने में आया है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो काफ़ी कम हो गई है। उसका कारण ये है कि जो भी भूमि के अंदर पौधे को करीब 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हमारी आजकल की खेती इस तरीके से होती जा रही है और कुछ किसान जो अपने असंतुलित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लग गए, जैविक खादों का प्रयोग भी कम हो गया है, इसकी वजह से मृदा की जो उर्वरता है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर हम देखें तो 1950 में भूमि के अंदर सिर्फ एक नत्रजन की कमी पाई जाती थी, लेकिन आज अगर हम आंकड़ों को देखें तो नत्रजन के साथ साथ फास्फोरस की, पोटेशियम की, सल्फर की, कैल्शियम की, लोहा की, मैग्नीशियम की, बोरोन की और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी भी कमी भूमि में पाई जा रही है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होने के वैसे तो कई कारण हैं, जैसे कि फसलें मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचती है तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और किसानों को उसी हिसाब से सही उर्वरकों का चयन करना चाहिए, लेकिन कुछ अज्ञानता की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से जब किसान असंतुलित तरीके से रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, वो एक ही तरह की खाद डालेंगे या तो डाई डालेंगे या नत्रजन के लिए यूरिया डालेंगे और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे

धीरे क्या है कि उन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और आज हम अच्छा बीज भी जब हम प्रयोग कर लेते हैं, कीट हम रोगों का प्रबंधन भी कर लेते हैं, तब भी देखते हैं कि फसल से उतना अच्छा उत्पादन हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। उसका कारण यही है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति जो लगातार कम हो रही है, वो कारण ये है कि जब आप सही पोषक तत्वों को उसके अंदर फसल में उपयोग नहीं करेंगे, साथ के साथ कई परिस्थितियां प्राकृतिक भी होती है कि कहीं आपके अगर जल भराव की समस्या है तो वहां भी पानी में घुल के पोषक तत्व जमीन से नीचे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाती है। और आज अब सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने यही आ रही है कि जब हम अधिक उत्पादन लें तो जो हमारी भूमि है, जो मृदा है जिसमें पौधे का विकास होता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो और उसकी उर्वरा शक्ति इतनी हो कि जो पौधे की विकास की क्षमता है, पौधा उसमें पूरी तरह के विकास करे और उससे अधिक से अधिक उत्पादन हम लोगों को प्राप्त हो। इसलिए सभी किसान भाइयों को ही चाहिए कि जो मृदा उर्वरता को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो सब करने चाहिए। और इसके लिए देखिए, आपको जो भी कल्चरल प्रैक्टिस है, भू परिष्करण क्रियाएं हैं, जुताई है, पाटा लगाना है, इनको आप सही तरीके से अपनाएं और अपने खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें जिससे वायु का उचित संचार हो सके। कुछ समय अगर आपके यहाँ सघन खेती हो रही है तो कुछ समय तक आप भूमि को पड़ती छोड़कर भी भूमि की उर्वरता को बचाया जा सकता है। साथ के साथ में अगर कोई आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ भूमि का कटाव हो रहा है तो आप भूमि के कटाव को भी रोकने का प्रयास करें। और जो भी कहीं पर आपकी अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, उसको भी आप जो भूमि सुधारकों का उपयोग करके और उसको सुधारने की कोशिश करें ताकि आपकी उर्वरता जो भूमि की है वो बढ़ सके। और अगर कोई खरपतवार है मृदा के अंदर, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनकी भी एक आपको रोकथाम करनी चाहिए जिसकी इसकी मृदा उर्वरता को, क्योंकि ये नष्ट करते हैं। और जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं कि जो किसान सघन खेती कर रहे हैं, तो वो जो हमारी प्राचीन एक खेती थी, हम लोग बताते थे कि मृदा उर्वरता को किस तरीके से आप बनाए रख सकते हैं, तो आज की समय के अंदर किसान भाइयों, हरी खाद की फसल को एक बार आप अवश्य उगाएं, क्योंकि जो भी आपकी भूमि है उसमें नत्रजन और कार्बनिक पदार्थ का स्तर बढ़ाने के लिए हरी खाद का प्रयोग सर्वोत्तम है। कई किसान जरूर इसको हरी खाद को करते हैं, लेकिन अधिक संख्या के किसान आजकल इस हरी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। हरी खाद के लिए फसल चुनते समय ध्यान रखें कि फसल शीघ्र उगने वाली हो और अधिक पत्तियों वाली हो, शाखादार हो, ताकि भूमि में अधिक जीवांश पदार्थ जो है वो प्राप्त हो सके और फसल मुलायम तने वाली हो ताकि वो शीघ्र ही सड़ जाए, और गहरी जड़ वाली फसल हो जिससे कि भूमि को खुला बना सके, और अगर संभव हो तो दलहन की फसल ही इसके लिए आप प्रयोग करें। यह वायुमंडल की नत्रजन को भूमि में स्थापित करती है और इसकी जड़ों पर प्रचुर मात्रा में ग्रंथियां हो, प्रचुर मात्रा में बीज पैदा करने वाली हो। हरी खाद के लिए सनई है, ढेंचा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, ग्वार है, आदि फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन फसलों को हरी खाद के लिए उस समय जोतना चाहिए जब उनमें फूल आने को हो। जब हरी खाद सबसे अधिक रसयुक्त हो तभी उसे जोतकर मिट्टी में मिला दें, जिससे हरी खाद का विघटन शीघ्रता से होता है। ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब आप इसको भूमि में मिलाएं तो उसके बाद या तो प्राकृतिक रूप से बारिश होनी चाहिए, अन्यथा आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी जिससे कि हरी खाद पूरी तरह से उसमें गल जाए। और इससे विघटन से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि आपकी आगामी फसल को लाभ मिल सकता है। और हमने अनुसंधानों में देखा है कि हरी खाद की फसल से 30 से 50 किलोग्राम नत्रजन प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अगली फसल के लिए रासायनिक खाद का कम प्रयोग करना पड़ेगा। आजकल ये भी चल रहा है कि आप इसकी जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो जीवाणु खादों का उपयोग करके भी बढ़ा सकते हैं। जीवाणु खाद में कई तरह के बाजार में मिल रहे हैं, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, फास्फोटिका है, नीलहरी शैवाल है, और ये दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो बीजोपचार कर सकते हैं और एक भूमि में मिला सकते हैं। अगर आपको बीजोपचार करना है तो जितनी उर्वरकों की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वो आप देख लें कि 1 एकड़ बीज के लिए जितने बीज हैं उसमें करीब आप 10 ग्राम जो जैव उर्वरकों का प्रयोग कर लें, और इस तरीके से उसमें पानी में मिलाकर उपयोग करें कि वो जो जैव उर्वरकों की बीजों की

0: ऊपर समान रूप से एक तरह से परत बन जाए और फिर इस बीज को उपचारित छाया में सुखाएं और तुरंत बिजाई कर दें। और बीज उपचार करना अगर आपको संभव नहीं लग रहा है तो मृदा का उपचार भी आप कर सकते हैं कि उसके लिए आप 30 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद ले लें और या मिट्टी ले लें, थोड़ी सी उसका मिश्रण बना लें और अंतिम जुताई से पहले और फसल की पहली सिंचाई से पूर्व समान रूप से एक एकड़ खेत में छिड़क कर मिट्टी मिला लें। ये जीवाणु खाद बहुत ही सस्ते और आपके प्राकृतिक रूप से नत्रजन की जो अपने वायुमंडल में होती है उसको भूमि में स्थापित करेंगे और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में योगदान करेंगे। साथ के साथ ये भी देखने में आया है कि दूसरा, आप किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल भी बोते रहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन लंबे समय में आप जाके देखेंगे तो इससे भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो काफी कम हो जाती है और आगे जाके आपका उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। इसलिए आप इस भूमि की जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपयुक्त फसल चक्र का भी प्रयोग करें, इससे भी आप मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते। इसके लिए आप मूसला जड़ वाली फसलों के पश्चात जो झकड़ा जड़ वाली फसलें होती हैं उनको बोना चाहिए, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोनी चाहिए, अधिक निराई गुड़ाई करने वाली फसलों के पश्चात कम निराई गुड़ाई करने वाली फसलें बोनी चाहिए और फसल चक्र में फसलों को इस प्रकार से उगाना चाहिए कि जिससे आपका भूमि का कहीं अगर कटाव हो रहा है तो वो ना हो और मृदा संरक्षण को प्रोत्साहित देने वाली फसल होनी चाहिए। एक ही कुल की फसलें भी लगातार नहीं उगानी चाहिए क्योंकि इससे बीमारियों कीटों का प्रभाव आगामी फसलों को भी हानि पहुंचा सकता है। आप अपने क्षेत्र के अंदर जो भी फसलें प्रचलन के अंदर है उन फसलों का इस तरीके से एक के बाद एक चक्र बना लें ताकि जो एक ही कुल की फसल ना हो और एक ही तरह की जो कृषि क्रियाएं चाहने वाली फसल ना हो, इससे भी आप भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप ये देखिए किसान भाइयों की उर्वरक जो है पौधे के लिए पूर्ण भोजन नहीं है और फिर भी मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके हम उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं और रासायनिक उर्वरकों में पौधों के आवश्यक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे प्राय किसी एक ही पदार्थ की जो होती है प्रधानता होती है, किसी किसी में दो तत्व भी हो जाते हैं और नत्रजन से पौधों की वनस्पति और फास्फोरस पौधों की जड़ों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें फैलाता है। इसका प्रभाव अनाज के दानों पर भी पड़ता है। देखने में ये आ रहा है कि आप सिर्फ नत्रजन और फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हैं जबकि आपकी फसल में और आपकी मिट्टी के अंदर अगर आप देखें तो दूसरे पोषक तत्वों की भी कमी होती जा रही है। तो सभी किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपनी मिट्टी की जांच कराएं। आजकल सरकार की तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जा रहा है तो उससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी भूमि में वास्तव में किसके पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता है और उसी हिसाब से आप जहाँ तक संभव हो रासायनिक खाद का अपना प्रयोग जो है वो सही मात्रा में करें। इससे भी आपका जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप कोशिश करें कि कम से कम 3 साल में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई बायोगैस की स्लरी हो उसका एक बार भूमि में अवश्य प्रयोग करें क्योंकि गोबर की खाद में सभी तरह के पोषक तत्व है उसको फसल को मिलेंगे, साथ के साथ वो जो मृदा की जो संरचना होती है उससे भी उसमें सुधार होती है। तो ये इस तरह के कुछ उपाय हैं जिसको आप करके अपने जो भूमि की जो मृदा उर्वरता उसको बनाए रख सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों को सिर्फ जो मुख्य बातें हैं वो ये ध्यान रखने की है कि कभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सोच समझ कर करें और जहां भी जरूरत नहीं हो, क्यों कई बार देखा है कि हमारे किसान भाई एक दूसरे की देखते हुए और बिना सोचे समझे बिना मृदा की जांच कराए हुए उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, इससे दूसरे पोषक तत्वों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां पर एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो दूसरा पोषक तत्व है कि रिएक्शन ऐसी होती है कि पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इन्हीं सब बातों का वो एक ध्यान रखें और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, उसको बढ़ाए रखें ताकि जो भी एक बीज की क्षमता है, उन्नत बीज की जो एक पैदावार देने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार उस पौधे का विकास हो और आपको अधिकतम उत्पादन उससे प्राप्त हो।
1: तो किसान भैया, आप सुन रहे वार्ता मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय विषय पे और जानकारी दे रहे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। किसान भैया, वो कार्यक्रम में चलते चलते आपको एक सूचना और दे दें। महानिदेशालय के

0: स्टेशन के अनुपालन में आपको जो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम है या को समय परिवर्तित किए जा रहे हो, 1 अगस्त 2026 सौ ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को प्रसारण समय अब सायं 6:30 की बजाय 6:50 से 7:20, यानी 6:50 से 7:20 के बीच में जो किसान वाणी और ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को समय है अब 6:15 के बजाय 6:50 से 7:20 तक यह कार्यक्रम को प्रसारण होगा। तो किसान भाई, आज के कार्यक्रम में आपने लई धान की फसल में सामयिक कार्य विषय पे जानकारी, बरसात के मौसम में पशु सुरक्षा और सुनी वार्ता, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय विषय पे। अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप यादव। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

चित्रा सिंह की आवाज में आपने सुनी ये भक्ति रचना। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए आप सुनते हैं हरिओम शरण को।

0: कार्यक्रम के अंत में आपने सुनी भक्ति रचना जगजीत सिंह की आवाज में, और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम? टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्यिक, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज नवकथा नयो जमानो। कथाकार हैं कमल भार्गव।
4: हल्ला की आवाज सुन के रामवती चौंक पड़ी। दोपहर को वक्त हतो, रामवती ने कमर सीधी करवे को खटिया पे पड़ी हती कि अचानक हल्ला की आवाज वाके कानन में पड़ी। उत्सुकतावश वो खटिया से उठ के बाहर की तरफ भागी तो सुनाई पड़ो कि कोई छोरी कुआं में कूद पड़ी है। वो गांव की तरफ भागी, वहाँ वाने देखो कि सारो गांव ही कुआं पे जुड़ गयो हतो। औरतें एक तरफ खड़ी वहीं खुसर खुसर कर रही थी। रामवती भी वहाँ में शामिल है गई। मर्द लोग कुएं में डूबी छोरी को निकालवे की कोशिश कर रहे हते। एक औरत कह रही कि देखो घोर कलयुग आ गयो है, नेक मैया बाप काउ बच्चा को डांट देवे तो ये ना सोचत कि मैया बाप ने कितने मेहनत के उनको इतक बड़ो करो हतो। रामवती बोली, बहन लीला ऐसी कहा बात है गई कि छोरी कुआ में गिर पड़ी, और जे छोरी कौन की हते? अरे वही राम खिलावन की बड़ी छोरी पुष्पा हते। आज बाने अपनी छोरी को काउ बात पे डांट दियो तो जा छोरी ने कुआ में गूद के अपनी जान दे दई। इधर गांव के मर्दन ने कोशिश करके छोरी पुष्पा को कुआं के बाहर निकाल लियो। वाके पेट में पानी भर गयो हतो। काफ़ी देर तक पानी में रहवे के कारण वाके शरीर फूल गयो। पुष्पा के मैया बाप को तो रो रो के बुरा हाल है गयो। सवेरे गांव वाले राम खिलावन को हिम्मत बंधाए रहे कि अब रोबे ते कछु फायदा नाए। अब गई भई चीज तो लौट के आबे ते रही। औरतें भी पुष्पा की मैया को समझाए रही कि रोवे ते का फायदो, जे सारी बात पहले ते ही सोचनी थी कि वाय डांटनो चाहिए कि नाए। पुष्पा की मैया बिफर पड़ी तो कब मैया बापन को अब इतेक हक नाए रहो कि वो अपने छोरा छोरी को डांट मार सकें। हाँ बहना, अब वो जमानो नाए रहो। पहले हमारे मैया बाप धैर्य को पाठ पढ़ाया करते, अब तो नया जमानो आए गयो है। जामे धैर्य की कोई बात नाए सिखाई जावे, सब काम जल्दी जल्दी को हते। रामवती भी जमुना को समझाए के अपने घर आए गई। घर में खाना बनावे की तैयारी करवे लगी और सोचवे लगी कि वास्तव में जमाने में बहुत परिवर्तन आए गयो है। शहर की गंदी हवा अब गांवन में बहने लगी है। पहले जैसे आपस में निश्चल प्यार व सहयोग की भावना नाए रही। सब कुछ स्वार्थ पे निर्भर है गयो है। क्या रिश्ते क्या नाते, हरेक के बीच में स्वार्थ या पैसा ने अपनी टांग अड़ाई दई हते। जाकू अपने छोरा मोहन को ध्यान आयो कि वाकऊ छोरा एक दिना जाई गुस्सा में घर ते निकल गयो। आज 3 साल है गए हते, को खबर नाई, ना कोई पतो ना कोई खबर, कैसे हाल में होगो वो, जिंदा हते कि मर गयो। बाकी कोई सुधी नाई मिली अब तक। मोहन को वाने एक दिना पढ़वे के काजे डांट दियो हत तो वो रूस के घर ते बाहर भाग गयो। मोहन के पिता तो वाई दिनाते खटिया पे परे कि जैसे उनको लकवा मार गयो हो। बेचारे दिन भर खटिया पे परे रहते, केवल जिंदा रहवे को कछु खाए पी लेते, परन सारे दिन

0: ना ही वो परे ही रहते। खाना बनाए के और मोहन के बाप को खिलाए के रामवती भी सांझ परे खटिया पे लेट गई, क्योंकि आज वाको मन बहुत दुखी हतो। एक तो वाको अपना छोरा की याद सताए रही और दूसरी गांव में जौन जवान मौत है गई तो सारे गांव में सन्नाटों सो पसर गयो हतो। अचानक रामवती को अपने घर के दरवाजे को खटखटावे की आवाज़ सुनाई दई, लगो कि कोई दरवाजे को पीट रहे होते। वाने दरवाजो खोलो तो क्या देखते हैं कि गांव को चौकीदार दो सिपाहियों को साथ लेके खड़ो भयो है। रामवती ने पूछी, कहाँ बात है? सिपाही बोलो कि हम थाने ते आए हैं, मोहन को घर जई है का? रामवती ने सिर हिला दियो, हाँ करी, लेकिन मोकू जे तो बताओ कि तुम आज जहाँ ते क्यों आए हो? मोहन को तो घर छोड़े 3 साल है गए हैं, बाकी कोई खबर मोकू नाए हते। का तुम्हें मोहन मिल गयो है? नाए ऐसी बात नाए बात है कि हमें बम्बा के किनारे एक लाश मिली, बापे कछु गोलियन के निशान हते। तुम शिनाख्त करके बताओ कि वो तुम्हारे बेटा मोहन की तो नाए हते। रामवती अपने साथ 2-4 आदमियन को लेके थाने पहुंची। वहां वो अपने छोरा की लाश देखकर पहचान गई। छोरा मोहन की लाश देखकर वाकू एकदम गश आए गयो। थानेदार से पूछी कि क्या बात है गई? थानेदार ने बतायो कि मैया, तेरो छोरा जब ते घर से गयो है वो शहर में गलत धंधे पे पल गयो। पढ़ो लिखो तो हतो नहीं, काऊ अच्छे धंधे को करतो या कछु वाकी अच्छी नौकरी मिल जाती। वो जल्दी जल्दी धनवान बनने के चक्कर में गलत लोगन के हाथ में पड़ गयो। वाकू अपने अच्छे बुरे को ज्ञान थो ही नहीं, सो वो ना समझ पायो कि जिन लोगन के साथ मैं काम कर रहे हो है ये अच्छे हैं कि बुरे। वाकू तो खावे पीवे को अच्छो मिल रहे हो और पैसा भी मिल रहे हो, सो वाके कदम गलत रास्ते पे मुड़ गए। कुछ दिन पहले जाने और जाके साथियन ने एक बैंक लूटी, सो वाको जे बंटवारो अपने साथियन के बीच में कर रहे हो तो काऊ बात पे नाराज है के जाके साथियन ने जाकू गोली मार दई और लाश को बम्बा पे डार गए। रामवती अपना माथो पकड़ के बैठ गई, बोली, वारे नयो जमानो, पैसा की कैसी हवस हते कि पैसा के पीछे वाने अपने मैया बाप छोड़े और अवाई पैसा के पीछे वाने दुनिया। रामवती थानेदार से बोली, साहब आप बड़े बड़े बदमाशन को मारो हो और जेल में बंद कर दिया करो, आप जा जमाने को ना बंद कर सको जो हमारे बच्चन को बिगाड़ रहे हो है। इनको अपने माँ बाप रिश्ते नाते से दूर कर रहे हो, सब कुछ इतनी जल्दी चाहवे कि कछु कुछ मत पूछो। अगर ऐसे ही हाल रहे हो तो एक दिना जा दुनिया भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यह कहकर दुखी मन ते अपने बेटे की लाश को घर ले आई। सारो गांव एक बार फिर दुखी है गयो। गांव वाले बोले कि वास्तव में जा नए जमाने में पुराने जमानों ही बढ़िया हतो, परस्पर एक दूसरे से स्नेह के संबंध से बंधे भये थे, आगे भगवान की मर्जी।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज नवकथा नयो जमानो। कमल भार्गव। और आइए अब सुनते हैं ये ब्रज लोकगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आंशफिना सक्सेना की आवाज़ में। और इसी ब्रज लोकगीत के साथ कार्यक्रम ब्रज साहित्य कब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार

0: शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉ सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

0: ही अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
1: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उस पे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते

0: है क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इंग्लिश प्रोग्राम।
2: गुड इवनिंग लिसनर्स, आई एम योर होस्ट शीबा राकेश। द क्रिएशन वी ऑक्यूपाई एंड द क्रिएशन वी आर अ पार्ट ऑफ, द बिगॉटन ऑफ द हिरण्यगर्भ, often remain oblivious of our own origins. The concepts of the Vedas remain often out of grasp, probably because of the paucity of time or the lack of interest and understanding. As we continue to get lost in the maze of the world-created religions, this edition of the English program marks a humble beginning of an attempt.
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं एक बार फिर से हाजिर हैं आपके संदेशों, फरमाइशी गीतों और आपके विभिन्न संदेशों के साथ लेकर कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में पहला संदेश मिला है गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा का। गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके परिवारीजन। गांव नौधरा से हैं कोमल मास्टर, जसोदा, लाखन, तुरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांशी, चुन्ना और परिवार के सभी सदस्य। झज्जर हरियाणा से जुड़े बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। बुल्ढाणा मारा से वासुदेव बोधवड़े, अनीता और रमेश राव। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र, साहिल, बिट्टा बजाज। अमरावती महाराज से प्रवीण हांगोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ हांगोड़े। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। गणेशपुर गंजुडवारा ईटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शम्मा, परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से जुड़े दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मोताला महाराज से राज गवई, राजवीर गवई। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से आप सभी सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, इन्हीं के साथ बल्लू निषाद। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद

बुरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया, बेगम इशरत अक्रम, वसीम रूबीना, आरिज नदीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। संदेश मिला है नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, बिहार से मोहम्मद आसिफ और निकहत परवीन। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में फिल्म सनम बेवफा से। गीत लिखा सावन कुमार ने, संगीत महेश किशोर का। कार्यक्रम संध्या वंदन आपने सुना और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माही मलिक। मधुबनी बिहार से नवीन ज्योति रानी मेनका, श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल गोदावरी प्रदीप राजबहादुर शंभु और केवट। अगले संदेश के साथ शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी चेतन, विशाल और प्रियांशी मनवर। मलकापुर महाराज से नारायण इंगले, सोपान आशीष मुरहेकर। नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। यवतमाल महाराज से जुड़े लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षिता, रियांश लोखंडे। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर अलकमा खत्री, अल्तमश रमेश गौड़, शादाब खत्री। चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ, साइना निवान शर्मा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कामड़े। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा डब्लू, सोनम और इनके समस्त परिवारीजन। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श अलौकिक चंसौलिया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी जोगेश, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल, किरण कपिल, कुणाल मेहरा, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका, गजेंद्र हियांश चंदन। संदेश मगरलोड छत्तीसगढ़ से। खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया खत्री, हलीमा जिक्रा खत्री। खंडवा से शेख सईद और अनस। निजामाबाद तेलंगाना से जुड़े निजाम, अजीज मेतान, सईक फारूक और इनके समस्त परिवारीजन। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी रॉय। गाजीपुर से प्रतीक रोशनी, प्रांजल रॉय। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विकी, नौनक, नानू और इनके समस्त मित्रगण। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम, नजमा और सरिता। संदेश मिला रेलवे रोड गंजुडवारा से। शेगांव बुलडाणा महाराज से संतोष एस काले, तेजस और लोकेश एस काले। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम और कृष्णा देवांगन। अजय सोनवने, करिश्मा अविकास, साहिसा सोनवने, कोइस्ते वस्ती पुनावले से। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका सानू, अर्चना। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके। भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा।

माँ प्रीति कार्तिक आर्यन, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीयू स्वर्णकार। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम कन्यादान, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत रचना नीरज की, संगीत शंकर जयकिशन का।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्याम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन। इसी क्रम में अगला संदेश हमें मिला है हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी का झालावाड़ राजस्थान से। इन्हीं के साथ मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुनदीबाई बागरी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार जुड़ चुके हैं। करणवीर हाउस बुच्छो कैंचिया बठिंडा से।

प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप एकम, दमन अभिजोत, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान अरजान, अबान अब्बासी। संदेश मिला है बुलंदशहर से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिद मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, पलक लुबना और यश मंसूरी। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से गुरुवंश श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार नसीम, आयशा और इनके समस्त परिवारजन। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक, प्रमिला और अनुश्री सैनी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित पीयूष कुमार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव विर्क, बलविंदर जयतेग और मिका विर्क। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी और इनके परिवार के समस्त परिवारजन। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, अंतरा देवी, प्रभा और इनके समस्त मित्रगण। अधाड़ नानगाट छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू हसमुखलाल, शक्ति, संजीव जिंदल। संदेश मिला है समाना शहर पंजाब से। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। करवदा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। धांडी नादुरा मारा से श्री कृष्ण, संदीप, अमूल्य भाठे। दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर रियाज अंसारी। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका, वाणी थांदी। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती जानवी, वैष्णवी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से। तेलंगाना वरंगल से रिजाउद्दीन, ख्वाजा फासी और आयशा जुबैरिया। अभिजीत गवानकर, सरिता, सिद्धांत, प्रकाश और टुकटुक गवानकर। संदेश भेजा उमरखेड़ पंजाब महाराष्ट्र से। मधुबनी एक्सटेंशन से कोशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र रिद्धि सिद्धि, जीवच श्वेता। लखनऊ ऐशबाग से रानी मुकेश, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंद्रु, संस्कृति, पौरुष। खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा की, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा की।

0: इसी गीत को सुनना चाहा जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत और सुंदरलाल खटक ने। इस गीत को आवाज दी केके ने फिल्म जिस्म टू से। और इसी गीत इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। तेरी धड़कनों को ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को

चलने दे। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह

विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की

0: गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देश का

अभी तक आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होगा। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय संध्या 6:30 से संध्या 6:50 तक रहेगा। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से 6:30 तक होगा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म माई नेम इज खान के कुछ नगमे। इस क्रम में सुनते हैं ये पहला गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना अदनान सामी, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा निरंजन अयंगर ने, संगीत निर्देशन शंकर एहसान लोय का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना शफ़ाक़त अमानत अली की आवाज़ में, और आइए अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत। गीत को आवाज़ें दी हैं राहत फ़तेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा।

Germani. कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम सुन रहे हैं फिल्म माय नेम इज खान के कुछ गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म माई नेम इज खान के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में

0: भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा

0: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी

0: कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन और आपके लिए लेकर हाजिर है कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में पहले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं मामूल

मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश परभणी महाराज से रूपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संगई का। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से यूसुफ आसमा, अल्ताफ जाहिद और जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, सोनम वली, कल्लू मल्लू कालिया और फातिमा डोम।

सरगुजा मेनपाट से रुबीना थापा, सोनम फातिमा रेशमा थापा, झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली और फर्जू वली अंसारी। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं छत्तीसगढ़ महासमुद्र से अलीम आसमा और इनके समस्त परिवारीजन, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। दिल्ली से जुड़े रेशमा अंसारी, सना खान, शकीला, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, कबीरनगर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और दानिश गुनौरी। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री, महादेव पारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार रजवाड़े, हीरावली फाजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल, बिट्टा बजाज। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। अगले संदेश के साथ चंडीगढ़ से सतीश, विमला, अनेजा। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा चाहत। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम सितारा, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, गीत रचना गुलजार की, संगीत आरडी बर्मन का।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ आप सभी अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका गव्या सुच्चा सिंह, विनोदपुरी जयपाल यादव। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल रॉय, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा, अमित हैप्पी रॉय। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम इमरान और इरफान। करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुकना जूही आमना आसमा, इकबाल और इमरान। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं मोहल्ला हलवायन जिला शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन रोजी, बिट्टू साजदा, हिना कौसर। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रकर कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगलबेन राजेंद्र शाह। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सेक्टर 8 भिलाईनगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, दीपक, अनुश्री, श्याम कुमार। निमनाबाद जील

जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमप्रीत और करमजीत। शनि चौक खंडवा से उमाराज, कुलदीप, जगदीश, प्रभारानी। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल। संदेश मिला लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या स्वराज विराज। नागपुर से विट्ठल अनसुईया, पवन राजे जाधव। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार रिंकी शेखावत। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अंसारी कॉलोनी दिल्ली से आसमा खातून, फातिमा। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा अशफाक, आफरीन अल्ताफ, नीलोफर। बिहार से आप सभी सुधा शर्मा, काजल, मीरा, सोनाली, अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और इनके समस्त परिवारजन। नांदेड़ महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओम कुमार साई गायकवाड़। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत और जानविका। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, माधुरी किरण, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू और बबू, रोहिदास चौक पढ़नपुरी सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि कृष्णा घोड़के,

लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी। अगली फरमाइश के साथ लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरुलाल और अविराज। अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द, संदेश मिला अंबाला से। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, गुड़िया बानो। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना, निवान शर्मा, संदेश मिला है मलौट पंजाब से। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, इन्हीं के साथ एसके पप्पी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहरा जहां, संदेश भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा, इन्हीं के साथ माही मलिक। मलौट से

सतीश मिगलानी, विशाल माधवी और महावीर संधु। खुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिदान खुराना। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार जुड़ चुके हैं। नेहरू चौक पैटर से सुरेश यादव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया यादव। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन और एकनाथ यादव। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी और सुनीता साहनी, कमल साहनी, पिंकी, अफजल, संदीप और इफ़ज़ाल जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रजत मयंक और रीता भाटिया। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति कुमारी। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सहनी जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ श्रोता हैं खड़क सिंह छोकर, एडवोकेट, प्रकाश नगर मथुरा से। मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत और सहजप्रीत कौर। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। डिंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली, समर्पण भक्ति गवली। नांदुरा से संतोष वसानी, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक। गइंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक और चेतन नाहटा। किंडूराम जोईया, लीलाधर स्वामी, कुंदन सुनील शर्मा। संदेश हमें प्राप्त हुआ है विक्रम कड़वासरा से। इन्हीं के साथ सचिन, सतीश, योगेश हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं। हाजी इसाक लोलामनी, उमर कासमी, अयूब शेरी संदेश मिला जामा मस्जिद रोड गोगावा से। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक अहमद, शाकिर अलकमा अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम फैंटम, आवाज अख्तर चैनल की।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, भंजन उत्तर प्रदेश से, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, गुरुमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल और कनाडा से रोबिन सिंह। दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर रियाज अंसारी, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता पलक नसीब और यश मंसूरी, सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला लाडली रिमझिम और सक्षम चौबे।

अमरावती मारा से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चनाताई हीरामन और प्रणय प्रतिभा। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़ चुके हैं। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम, बीवी वामिका और वाणी थांदी। कार्यक्रम में अगला संदेश मथुरा से सुरेश चंद शर्मा, काना और इनके समस्त परिवारजनों का। सदर बाजार कुरावली से माया देवी, अनिल कुमार, राहुल कुमार, विनीत और सोनम वर्मा। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब अलमाज, छोटू, शंकरलाल गंगराडे, वनीता और हसनैन पवार। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका और रानू।

बेबी शालिया खत्री हलीमा जिक्रा खंडवा मध्य प्रदेश से, नबी हसन अब्बासी शहनाज नावेद हसन सुहेल अनम यशफ रसीद वारसी, संदेश हमें मिला है मारहरा दरवाजा एटा से, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा। लातूर से संगीता पीआर और सूरज जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन जुड़ चुके हैं, ललितपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी श्रोता, संतोष नामदेव अभय अनिल अजीत ज्योति अनीता रंजना संजना भारती पूर्वी रूही अनु अनन्या भक्ति शक्ति आदर्श लवकुश और नामदेव परिवार के सभी सदस्य। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम रूबीना आरिज ममता रानी पूनम कुमारी अरहान हमजा शाजिया नाजिया बच्चू और चीना शेख, मथुरा से सबा अंसारी शकील बुशरा हिना गुलिस्ता नंदिनी अंजलि, नलेश्वर नगर नरवेल मारा से पीएस नहावकर निर्मला विशाल नहावकर, शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, तुलसी मस्कीन वीना आशीष राजा चैतन्य मस्कीन। अगले संदेश के साथ आप सभी बेरडी से जुड़ चुके हैं राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी और चंचल। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत, फिल्म का नाम चमेली, आवाजें सुनिधि चौहान और साथियों की, गीत रचना इशाद कामिल की, संगीत संदेश शांडिले का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल और डुगू सिक्का। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, मीनाक्षी तिवारी और इनके समस्त परिवारीजन, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान बाबू। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, करणवीर हाउस फुच्चो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, एकम, दमन और अभिजोत, अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, डॉक्टर सुनील जनागल, दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल काजल, पंकज मानवी, तन्वी, लक्ष्य मोहिनी और बलवीर सिंह, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़ चुके हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली पूजा और राधिका प्रभा देवी और अल कबीर, बालोद छत्तीसगढ़ से संदेश हमें मिला है। हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनिया करमकर, बिरडी मध्य प्रदेश से, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला, पटियाला से संदेश मिला है। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज और परिवार के सभी सदस्य। पीहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया जिया, तुसी आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंतलाल, हीरा मोती और पन्नालाल साहब। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम पगला कहीं का, आवाज मोहम्मद रवि की, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत और भरत मक्कड़।
1: इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा।
0: श्रोताओं इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं गज़लें। सबसे पहले सुनते हैं श्री गोपाल अग्रवाल के स्वर में गज़लें।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चंद गज़लें। अभी आपने सुनी श्री गोपाल अग्रवाल की आवाज़ में गज़लें, और आइए अब सुनते हैं सुरेश चंद्र वर्मा के स्वर में चंद गज़लें।

आप सुन रहे थे ये गीत सुरेश चंद्र वर्मा की आवाज में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम एवं किसानवाणी कार्यक्रम अब संध्या 6:15 के स्थान पर संध्या 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होगा। कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा 6:30 से 6:50 एवं ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से 6:30 रहेगा। और आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विदुषी गंगूबाई हंगल, प्रस्तुत कर रही हैं ख्याल गायन, निबद्ध है राग विहाग में, तबले पे संगत एस के हंगल की।

0: श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना विदुषी हंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, निबद्धता राग बिहाग में तबले पे संगत एस के हंगल की। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जिसमें ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब संध्या 6:15 के स्थान पर संध्या 6:50 से 7:20 पर प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय संध्या 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है, उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस

0: ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi